0: और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एक 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

संग का रंग लगता है और रंग लगने से स्वरूप बदल जाता है। जैसे लोहे का रंग काला होता है पर अग्नि के संपर्क में आते ही उसका काला रंग लुप्त हो जाता है, चमकदार लाल रूप बन जाता है और अग्नि के समान गर्मी को वातावरण में फैलाने लगता है। परमपिता परमात्मा भी सर्व गुणों की चमक से चमकते हुए सूर्य हैं। कोई भी आत्मा जब उनके नज़दीक जाती है तो उसका रूप भी निखर जाता है और वो गुणों का रंग अपने में लगाकर वायुमंडल में गुणों को बिखेरने लगती है। गुणों से भरपूर आत्मा सबके प्रति शांति बिखेरती है, प्रेम और पवित्रता बिखेरती है।

कर्मों का संपूर्ण त्याग संभव नहीं है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, अथाह कर्म, और इसी मार्ग से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ते हैं।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नानादि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी, हिमाचली गीतों और लोक गीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग लेकर हम आएंगे 7:40 पर। गाने सुहाने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। गीतों का कारवां पेश किया जाएगा सुबह 10:00 10:30 पर और 11:30 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोक गीतों का कार्यक्रम। 10:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर। 11:05 पर आपको सुनवाएंगे गूंज पहाड़ों की। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। 12:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा सुनो सखी। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम 5:10 पर फिल्मी भजन आपको सुनवाएंगे। 5:25 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युवा मंच। आज सुनिए हेलो जीनियस। सुरमई सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 6:05 पर। 6:30 पर मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम आप सुनेंगे। किसान वाणी कार्यक्रम होगा 7:10 पर। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस सुनिएगा 8:00। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। हिम दर्शन कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा 9:15 पर। रात 9:30 पर संस्कृति भारती, 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर सुबह 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात 11 बजे हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित सहयोग के प्रगति की समीक्षा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान

0: के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच में श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम ने वैश्विक सहयोग और ग्लोबल साउथ के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में ब्रिक्स को मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की है। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो रेल लाइन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक में योजना के दूसरे चरण में किफायती आवास श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 29,000 अतिरिक्त मकानों को भी मंजूरी दी गई। ये अनुमति असम, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के 131 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। चीन के मोकी में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues, including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy security, healthcare, disaster resilience, and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with the Chinese President, the Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, and Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung. Prime Minister Narendra Modi has called for secure sea lanes, open supply routes and the safety of seafarers to sustain global trade. He also urged BRICS countries to work towards removing trade barriers and expanding opportunities for businesses. Mr. Modi stated this while addressing leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in

0: सुबह सुहानी।
1: नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूँ संगीता। श्रोताओं, आप हमारा ये कार्यक्रम FM 103.4 MHz के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का आगाज सुविचार के साथ, काम से प्यार हो तो मेहनत बोझ नहीं लगती। जी हाँ श्रोताओं, अगर आपको अपने काम से सच्चा प्रेम है तो मेहनत बोझ नहीं लगती है, पर आप कभी कभी निराश भी होते होंगे, लेकिन फिर उठ खड़े होते होंगे क्योंकि आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहती है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए लगातार मेहनत, अभ्यास और धैर्य जरूरी है। रोज खुद से कल से बेहतर बनाएं और अपने सपनों को सच करें।

काला बाजार फिल्म के इस गीत के बाद फिर से आप सबका स्वागत है सुबह सुहानी कार्यक्रम में। आज 12 सितंबर है और आज का दिन इतिहास में अपनी खास जगह रखता है, तो आइए अब नजर डालते हैं आज विशेष पर। 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे। 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत कार्रवाई की थी। भारतीय तैराक मिहिर सेन ने आज ही के दिन 1966 में जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने का ऐतिहासिक कारनामा किया था। 1897 में इतिहास का प्रसिद्ध सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगान पठानों का डटकर मुकाबला किया और फिल्म केसरी इसी युद्ध पर बनी फिल्म है। 12 सितंबर 1959 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा था, जो एक बड़ी कामयाबी थी। और श्रोताओं, 12 सितंबर को भारत में ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है और ये दिन परिवार में बुजुर्गों के योगदान और उनके सम्मान में मनाया जाता है। और क्या क्या खास हुआ आज के

लता मंगेशकर का गाया हुआ मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और श्रोताओं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पुण्यतिथि आज ही के दिन मनाई जाती है। इनका निधन 12 सितंबर 1922 में हुआ था। ये हिंदी के जाने माने कथाकार व्यंग्यकार और निबंधकार थे और मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने हिंदी साहित्य में एक अमिट छाप छोड़ी। खेलोगे कूदोगे होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी ने खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम बनाया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल रूप से गांव गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के होने के कारण वे अपने नाम के आगे गुलेरी लगाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। कहानी उसने कहा

कथा को 1960 में इसी नाम से बड़े पर्दे पर लाया गया था। बिमल रॉय द्वारा निर्मित इस फिल्म में सुनील दत्त और नंदा ने अभिनय किया था। श्रोताओं, तो अब आपको अगर समय मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस समय में जब कहानी घुटनों के बल चल रही थी, तब गुलेरी जी की कहानियां पांव के बल चलकर चौकड़ी भरने में समर्थ थी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी साहित्य के मसीहा थे। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा को शत शत नमन। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इस गीत के बाद।

इस खूबसूरत से गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिन विकासशील देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्कृति तकनीकी क्षेत्रों में परस्पर बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों की साझा चुनौतियों से मिलकर निपटना और एक दूसरे के सफल अनुभवों और संसाधनों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक और दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है, वो है विश्व प्राथमिकी चिकित्सा दिवस। ये भी आज के दिन मनाया जा रहा है और ये दिवस जो है वो सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 2000 में की गई थी और मनाने का उद्देश्य आम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का प्रशिक्षण लेने को प्रोत्साहित करना है और सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है और स्थिति को गंभीर होने से रोक सकती है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। और अब आज की खबरों पर नजर डालते हैं।

दिल्ली में दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य मंच भारत मंडपम में सजेगा। इसके कारण दिल्ली एनसीआर और ट्रैफिक प्रतिबंध वहां पर रहेगा और ट्रैफिक डायवर्ट भी रहेगा। एफएसएसआई ने डिब्बा बंद खाने के पैकेट पर सामने चेतावनी लिखने को कहा है। तो इसके बाद अब नमकीन, बिस्किट, चिप्स, नूडल्स और मीठे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में चीनी, नमक या वसा की मात्रा अधिक होने की चेतावनी पैकेट के सामने दिखाई दे सकती है। डाक विभाग ने शुरू की ढाई आखर प्रेम पत्र लेखन प्रतियोगिता। धरती माँ को लिखा गया पत्र दिलाएगा 50,000 रुपए का इनाम। 31 अक्टूबर तक भेज सकते हैं हस्त लिखित पत्र। हर कोई हिस्सा ले सकता है। पत्र की अधिकतम सीमा 1,000 शब्द है। डिजिटल दौर में खत लिखने की परंपरा को डाक विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की है। 12 सितंबर को सभी न्यायालयों में लगेगी लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत में 15,000 मामलों का होगा निस्तांतरण और जिला कांगड़ा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सांसद और जिला प्रशासन के बीच हुई दिशा की हालिया बैठक के बाद जिले में आयुष्मान और हिम केयर स्वास्थ्य योजनाएं पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं। नागरिक अब फिर से इन योजनाओं के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज का लाभ उठा सकेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, सिरमौर और कांगड़ा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। ये थी आज की मुख्य खबरें।

0: श्रोताओ, इसी के साथ सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल की सुबह सुहानी कार्यक्रम में होंगी और जानकारियां, तो सुनते रहिए एफएम धर्मशाला 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी। सुबह के 7:40 हुए हैं। FM धर्मशाला पर अगला कार्यक्रम है शुभ प्रयाग।

शुभ प्रयाग कार्यक्रम में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं नरोत्तम कुमार और साथियों का गाया हुआ ये लोक भजन।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देश गान।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएगी।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में

0: और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सैकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उपप्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
6: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौ

0: नौजवानों के लिए हैं, ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी, पुतिन, फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी।

0: पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में। जूनियर एशिया कप में लगातार चौथे और कुल छठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ते के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. During the high-level event, leaders of the BRICS member countries are expected to discuss key issues including global governance, multilateralism, trade and investment, technology, food and energy, security, healthcare, disaster resilience and critical supply chains. The summit is being held under India's 2026 BRICS chairship with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Several key world leaders will participate in the high-profile summit. Prime Minister Narendra Modi will be joined by Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, and Iranian President Masoud Pezeshkian. The summit will begin with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Leaders of the BRICS member countries will also visit the Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam. This will be followed by a joint tree planting ceremony and a gala dinner hosted by Prime Minister Modi. The Prime Minister is scheduled to hold a series of bilateral talks with BRICS leaders on the sidelines of the summit today. These include meetings with Chinese President Xi Jinping, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Ethiopian Prime Minister Abiy

0: अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों का गाया हुआ ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी रिफ्यूजी, संगीतकार थे अनु मलिक।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
2: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी चाय।
4: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
3: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
4: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
5: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें।

0: किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गाने सुहाने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं फिदा फिल्म का गीत। अनु मलिक की धुन पर इस गीत को गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और करीना कपूर ने।

0: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
1: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
0: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
2: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
3: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। गुलजार का लिखा हुआ गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, अनु मलिक का संगीत है, आवाजें हैं सुनीता राव शान और साथियों की, फिल्म है अशोका।

श्रेया घोषाल और साथियों का गाया हुआ ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। फिल्म थी जब वी मेट, इरशाद कामिल ने बोल लिखे थे और संगीत था प्रीतम का। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं, कभी खुशी कभी गम फिल्म से ये गीत है। समीर ने गीत को लिखा है और संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथी।

इसी के साथ गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं और अब पेश है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सफर का सबसे बड़ा मजा यही है कि मंजिल का पता हो ना हो, रास्ते में कोई ना कोई किस्सा कहानी डायरी में जगह बना ही लेता है। और जब आप किसी ट्रेन, एरोप्लेन या बस की सीट पर बैठते हैं ना, तो बाहर का नज़ारा पीछे छूटने लगता है और दिल बस रास्ते को महसूस करता है। और जब गाड़ी के पहिए रफ्तार पकड़ते हैं तो असली किस्से कहानियां बनती हैं। तो बस आज बात करेंगे उस सफर की जो यादगार बन गया। उस सफर से जुड़ी कोई भी कहानी, किस्सा, याद आज आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। तो एक श्रोता जुड़ना चाह रहे थे लेकिन कॉल कट गई है। 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर। और आज हम बात कर रहे हैं उस सफ़र की जो यादगार बन गया। हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड मॉर्निंग जी।
1: हेलो
0: हेलो गुड मॉर्निंग जी।
1: जी
0: कौन morning. बोल रहे हैं
1: जी? योगेश जांगड़े भी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या हुआ, नाश्ता पानी नहीं किया क्या?
1: नहीं नहीं हो नहीं। गया है असल अच्छा। में खेत जाने की तैयारी थी।
0: अच्छा और फोन मिलाने की भी तैयारी थी।
1: जी जी जी
0: जी। तो आज हम बात कर रहे हैं उस सफर की जो यादगार बन गया। अगर है कोई किस्सा कहानी तो बताइए।
1: घूमने फिरने का तो हमारा कह सकते हैं सबसे बड़ा हमारा शौक रहा है शुरू से।
0: जी कहाँ कहाँ घूमे हैं?
1: देखिए उधर तो आपके मनाली कुल्लू वगैरह घूम लिए हैं।
0: वाह जी वाह।
1: और इधर जगन्नाथपुरी है, विशाखापट्टनम है, ये काफी अच्छी अच्छी जगह घूम चुके हैं।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह है।
1: और मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा वो मनाली का मनोरम वादी ही था।
0: जी हाँ उसका तो कोई जवाब नहीं है।
1: नीला आसमान और बर्फ की चादर, वो एक अद्भुत मतलब समय था।
0: बिल्कुल। कब गए थे आप
1: ये? 2021 फरवरी में गया था।
0: अच्छा जी, तब तो बर्फ बहुत सारी मिली होगी आपको।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लिए हैं।
0: जी तो अकेले गए थे परिवार के साथ
1: नहीं,
0: या
1: नहीं,
0: दोस्तों
1: मतलब
0: के साथ?
1: टीम के साथ गए थे, बहुत सारे लोग थे, 100-150 लोग थे।
0: जी तो बताइए कोई यादगार किस्सा।
1: सबसे यादगार तो वही है, मतलब पहले केवल कल्पनाओं में देखे थे कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, और वहाँ जाकर थोड़ा मस्ती भी करना, बर्फ से खेलना, घुड़सवारी वगैरह, ये सब काफी यादों में है।
0: जी तो चलिए आप तो दोस्तों के साथ गए थे, तो कोई नए दोस्त भी वहाँ पर बने, आपने बनाए कोई?
1: इधर से ना मतलब हमारे आसपास से अन्य जिलों से भी गए थे, तो उनमें से तो बहुत सारे मित्रों से संपर्क हुआ है।
0: जी तो कोई ऐसे भी हो जो अभी तक आपके साथ जुड़े हैं?
1: हाँ जी मोबाइल कांटेक्ट के जरिए जुड़े हैं अभी भी।
0: जी चलिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और ऐसे ही घूमते फिरते रहिए, नए नए दोस्त बनाते रहिए। कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आप भी इनकी तरह कॉल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन साहब बात कर रहे हैं?
2: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद मैडम।
0: जी आज बात हो रही है उस सफर

0: की जो यादगार बन गया।
1: बिल्कुल मैडम जी, जो यादगार सफर रहता है ये तो मतलब एक जिंदगी में कहीं हम बाहर टूर पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो सफर तो यादगार रहता ही है, क्योंकि उसको हम हर पल कभी कहीं हमारा जैसे फोटो खींचा हुआ है वो कहीं सामने आ जाता है, मोबाइल में देखते समय वो चित्र भी आ जाता है, तो वहां की उस समय के दौर में वहां की वादियों में हम वापस चले जाते हैं जब एक बार वहां हम टूर करके आ जाते हैं। जैसे वहां से 6-7 साल पहले अमरनाथ यात्रा पर गया था
0: जी,
1: तो वहाँ की जो अपने जम्मू से जाते हैं बस में बैठकर
0: जी,
1: तो उस यात्रा में जैसे कि शासन अपनी तरफ से जितने भी बाहर के यात्री रहते हैं दर्शनार्थी, उनके लिए जो व्यवस्था करते हैं वो एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के जो मिलिट्री कैंप में सबको ठहरना, सबका ध्यान रखना, उनको खान पान की व्यवस्था भी उन्होंने वहाँ मिलिट्री कैंप में की थी, और बिल्कुल सुरक्षा गार्ड से सभी को ले जाना, ये सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा और वो याद रहता है हमेशा भी। और कोई दूसरे यात्री भी यहाँ से जैसे जाते हैं ना
0: जी,
1: तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, वहाँ के मिलिट्री के जो जवान हैं वो आपका बिल्कुल एक परिवार की तरह ध्यान रखते हैं, ये याद मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब बालटाल में गया, बालटाल से मैंने तो घुड़सवारी नहीं की थी, मतलब बच्चों को घुड़सवारी पे बिठा दिया था।
0: हाँ
1: जी जी जी
0: जी,
1: तो वो जो साथ में भाई लोग चलते हैं ना जो घुड़सवारी वाले रहते हैं
0: जी,
1: वो भी आपका एक परिवार की तरह ही ध्यान रखते हैं
0: जी। तो वही हाँ, जैसे कई लोग नए नए जो जुड़ जाते हैं और कई ऐसी बातें होती हैं उस इंसान की जो हमें याद रह जाती हैं, है ना, और वो इंसान भी याद रह जाता है कि हाँ काश हम इससे फिर मिलेंगे।
1: हाँ, और वो भाई लोग भी मतलब ऐसा मतलब परिवार, बच्चे जैसे जो हम घोड़े पर उनको बिठाया तो वो बच्चों का भी बिल्कुल एक परिवार की तरह ध्यान रखते हैं, कहीं उनको वो गिर ना जाए, और साथ में मतलब पकड़ कर भी चलते हैं, घोड़े को भी पकड़ के चलते हैं, और आपको भी बीच बीच में वो आपसे पूछते जाएंगे कोई कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कोई घबराहट या ऐसा मतलब
0: जी,
1: मतलब वो एक उस सुखद पल है वो हमारे लिए याद के लिए, और वो वहाँ की यादियों के यादियाँ जो वादियों में हम घूमे हैं
0: जी,
1: और बाबा अमरनाथ के दर्शन किए, वो भी बहुत एक अनुभव है, बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पर
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जो
1: यात्रा
0: थी, बहुत
1: भी है
0: जी।
1: एक बात और भी है, जैसे कि वहाँ पर जो बाहर से यात्री आते हैं उन्हें वो वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी जो सामाजिक संस्था रहती है, जो भी हरियाणा पंजाब इधर से जितने भी जो आते हैं ना, वो वहाँ पर भी उनको जो यात्री हैं उन्हें बहुत ही परिवार की तरह रखते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ आराम करिए हमारे यहाँ पे कोई
0: जी जी, ऐसी यात्राओं में
1: मतलब
0: जी जी, ऐसी यात्राओं में ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, आप चाहे अमरनाथ जाइए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश की यात्रा है वहाँ जाइए, हर जगह ऐसी व्यवस्था रहती है, बस ज़रूरत होती है आप धैर्य के साथ वहाँ जाएँ और अपनी मनोकामना जो है वो भगवान के आगे रखें और वो पूरी हो जाए। जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए ₹105,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए ₹105,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स।

0: नई विक्टोरीज घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरीज अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम के साथ हम फिर से हाजिर होंगे 9:30 पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
3: ये थी FM हाइलाइट्स। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का यह शिमला केंद्र है। इस समय 9:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के साथ साथ DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। 2 दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश होंगे शामिल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान से अवगत कराने की आवश्यकता पर दिया बल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्थानांतरण नीति और कार्यकाल तय किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं। ऊना जिला के किसानों की आय बढ़ाने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल। मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों में भारी वर्षा का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में शामिल होंगे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान से अवगत करवाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल ने कल नई दिल्ली के बसंत कुंज स्थित श्री पेजावर मठ के दौरे के दौरान ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि ये मठ भारत की आध्यात्मिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने मठों द्वारा सामाजिक समरसता और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने सामाजिक सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में इन संस्थानों के योगदान की भी प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में तकनीकी और सामाजिक बदलाव समाज को निरंतर प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए

0: शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और उनका निश्चित कार्यकाल तय करना बेहद जरूरी है। शिमला में एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक कार्यकाल तय नहीं होगा तब तक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं लाए जा सकते। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षकों की मेरिट आधार नियुक्ति के साथ उनकी तैनाती के साथ तबादलों में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षक छात्र अनुपात देश में बेहतर है और औसतन 10 छात्रों में एक शिक्षक है, जबकि लाहौल स्पीति में ये अनुपात 3:1 है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों को समय की जरूरत और रोजगार की मांग के अनुसार तैयार करना होगा।
1: हम अपने शिक्षा को सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं रख सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कई दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की आवश्यकता। हमने बहुत नियुक्तियाँ की है और जो आपका पीटीआर रेशियो, इसे प्यूपल टीचर रेशियो कहते हैं, वो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में 1:10। लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं आपके लाहौल स्पीति में जहाँ पर 3 बच्चों के पीछे एक टीचर है, तो और जो आपकी NEP पॉलिसी बोलती है वो 60 के पीछे 2 टीचर बोलती है, जो मानक भी लगभग यही है। लेकिन मानकों के साथ युक्तिकरण बड़ा महत्वपूर्ण, और निश्चित रूप में पिछले 15 वर्षों में लगभग 4 लाख बच्चे आपकी सरकारी स्कूलों में कम हुए हैं, और उसका मुख्य कारण यही है कि समय के अनुसार हम अपनी सोच को, मैं समझता हूँ, परिवर्तन नहीं ला पा।
0: प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य न्यायिक सेवा के जिला व अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कैडर में बड़ा फेरबदल किया है। कल जारी आदेशों के तहत 15 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
3: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल किन्नौर जिले के छितकुल में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इनमें 3,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इको पार्क व 2,12,00,000 रुपए की लागत से रिम सरंग से रानी कंडा तक किए जाने वाले वन्य जीव सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि छितकुल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में राफ्टिंग शुरू करने और उच्च स्तरीय राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऊना जिला के किसानों की आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जुलाई 2015 में शुरू की गई इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना, सिंचाई कवरेज का विस्तार करना और भूजल की बचत करना है। योजना के तहत ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के 28 गाँवों में किसानों के लिए 75 करोड़ की लागत से सोआ नदी के किनारे 9 ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता।
4: ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित पीत क्षेत्र के 28 गांवों के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वरदान के रूप में साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत पीत क्षेत्र सिंचाई योजना के द्वितीय चरण के लिए 75 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सोआ नदी के किनारे 9 ट्यूबवेलों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ से पाइपलाइनों के माध्यम से पानी को खेतों में सिंचाई हेतु पहुँचाया जाएगा। इस योजना का लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य आगामी वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जल वितरण प्रणाली के जरिए 1,876 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: सीमा सड़क संगठन द्वारा तांदी किलार संसारी तिंदी मार्ग पर कल से सड़क सुधारीकरण के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जा रहा है। जन सुरक्षा के मद्देनजर तिंदी से कडूनाला तक का मार्ग प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को प्रातः 11 बजे से अगले दिन दोपहर 2 बजे तक यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। ब्लास्टिंग के बाद

0: सुरक्षा जांच और मलबा हटाए जाने पर ही बुधवार और शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद वाहनों को जाने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन ने यात्रियों और चालकों से इस शेड्यूल को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। बीती रात राजधानी शिमला सहित अन्य स्थानों में रुक रुक कर बारिश हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अभी भी 60 सड़कें यातायात के लिए प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश का पूर्वानुमान है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी लिखता है, मंत्रिमंडल का विस्तार टला, सीएम सुक्खू की रिपोर्ट पर निर्णय लेगा हाईकमान। अमर उजाला की सुर्खी है, आयकर अधिकारी पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, सीबीआई ने शिमला में दर्ज की प्राथमिकी। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल में बदले 15 जज। दैनिक जागरण ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के 230 बैकलॉग पद जॉब ट्रेनी से भरने पर अंतरिम रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। 2 दिवसीय इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश होंगे शामिल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान से अवगत करवाने की आवश्यकता पर दिया बल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, स्थानांतरण नीति और कार्यकाल तय किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं। ऊना जिला के किसानों की आय बढ़ाने में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। और प्रदेश के अधिकांश भागों में छाए बादल, मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक राज्य के कुछ स्थानों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मंजिल से खूबसूरत सफर की राहें हैं, खोल कर बाहें जो करती हमारा स्वागत है। जब तक न दिखे मंजिल का किनारा, तब तक हर मोड़ है एक नया नज़ारा। तो श्रोताओं, सफ़र में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान गुम हो जाता है, जेब कट जाती है, नए दोस्त मिल जाते हैं और हम सफ़र भी बन जाते हैं। ऐसी ही कोई किस्सा या कहानी आपके साथ हुई हो तो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ है। और टेलीफोन नंबर है 01892224391 और कॉलर आ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो।
4: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं
4: जी? मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
3: जी, स्वागत है आपका।
4: जी धन्यवाद आपका।
3: जी
4: जी जी जी, तो आज का विषय के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सफर की बात करें तो जैसे कि बचपन में हम जब सफर में जाते थे ना बस में।
3: हाँ जी।
4: तो सफर में हम क्या करते थे, जैसे क्या बोलते जो जो बस में गाने बजते थे गाने।
3: हाँ जी।
4: तो हम क्या करते थे, हम गुनगुनाते थे जो जो और गुनगुनाते थे। कई बार हम धीरे धीरे गुनगुनाते थे, कैसे मतलब इसलिए गुनगुनाते ताकि किसी को सुनाई ना दे।
3: अच्छा।
4: हाँ, तो धीरे धीरे गुनगुनाने लोग जो हमारे पीछे जो बैठते हैं तो बोलते क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं, हम बस ऐसी।
3: अच्छा जी जी।
4: बस गाने को गुनगुनाना या क्या बोलते हंसी मजाक करना आपस में। और कई बार और कई लोग तो ये करते थे आपस में बातचीत हंसी मजाक, कोई कई लोग करते थे गाने गुनगुनाते थे, मतलब हर प्रकार का शोर होता था, हम उस शोर का फायदा था।

0: मात्र थे
1: जी। आजकल आप बस में सफर नहीं करते अब?
0: कर लेते कभी कभी, क्या बोलते, जब जाना होता है। अब तो गाड़ी है, लेकिन पहले बस में बहुत सफर करते
1: जी, जी जी जी। तो बस की ये याद है आपकी कि आप जो गाना बजता था वो धीरे धीरे गाते हैं। मैंने तो कई बार बस में, अभी जो कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो हमने देखा है वो गाने मिलके, जो 8-10 दोस्त होते हैं मिलके गाते हैं गाने, और उनके साथ साथ बस के बाकी के लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं उस गीत को, गाने को, और उनकी जो बातें हैं उनको सुन के खुश होते हैं।
0: लेकिन कई लोग जो है बस में अंताक्षरी भी खेलते थे, क्या बोलते बस में कि ये इसे गाओ, ये इसे गाओ, ये इसे गाओ। लेकिन हमने अंताक्षरी खेलना बंद इसलिए किया क्योंकि बस में तो गाने बजते रहते, तो अगर अंताक्षरी में अगर हम खेलेंगे तो फिर वो गाना तुरंत समझ आ जाएगा कि इस अक्षर से ये गाना बनता है, तो इसलिए अंताक्षरी नहीं खेल पाते थे बस में।
1: चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और ऐसे ही हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला
0: जी। धन्यवाद
1: जी।

0: जी हाँ श्रोताओं, कई बार ऐसा भी होता है कि आजू बाजू में कोई खड़ा हो जिससे हम बात नहीं करना चाहते हैं, तो उसे हम देखते भी नहीं हैं, लेकिन हम बात करना चाहते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो,
1: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। देखिए, हम बात करना चाह रहे थे और आपकी कॉल मिल गई जी। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: आपने बहुत अच्छा विषय चुना है कि जीवन में आदमी कोई ना कोई सफर जरूर करता है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन मेरी पुरानी यादों में जो है 3-4 सपनों की मैं जिक्र करूंगा
0: जी, उनकी किस्से कहानियों के बारे में। जी
1: जी, पहले तो बिल्कुल। पठानकोट से जोगिंदर नगर तक जो छोटी रेलवे जो ना ब्रॉडवे से
0: जी जी जी
1: उसमें जाते थे तो कोयले का इंजन होता था
0: जी,
1: तो उसमें बड़ा मजा आता था, वो छुप छुप करके चलती थी। उसके बाद हम जाते थे।
0: तो उस ट्रेन में कोई मिला नहीं आपको, कोई सफर हम सफर या कोई ऐसी कोई बात, कोई ऐसी बात, कोई याद वो बताइए ना हमें। हाँ जी,
1: इसके बाद बताता ना दूसरे तीसरे नंबर पे किस्सा।
0: अच्छा, तीसरे नंबर पे हुआ किस्सा कोई। जी जी बताइए बताइए।
1: हम जा करके जब हम पालमपुर में उतर जाते थे तो उसके बाद गाड़ी में जब बस में जाना होता था
0: जी,
1: तो उस वक्त क्या होता था, हमको नए नए होते थे तो 1978 की बात है
0: जी,
1: तो हमको शौक होता था बस जो होती है छोटी होती थी, तो इतनी बड़ी लंबी लंबी बसें नहीं होती, छोटी छोटी बसें होती थी, तो हमको शौक होता था कि ऊपर बैठना
0: जी,
1: लेकिन कंडक्टर बैठने नहीं देते, हम जबरदस्ती ऊपर बैठ जाते थे।
0: जी जी जी हाँ, पहले बहुत जी जी होता था ऐसे, और दुर्घटनाएं हो जाती थी इसलिए बस कंडक्टर मना करते थे।
1: हाँ जी हाँ जी, तो हम जाते थे तो देखते थे कुल्लू मनाली तक जाते थे, तो सड़क को काट काट करके, पहाड़ काट काट करके, फिर उसमें कितना नीचे उसमें चोट लगने का भी खतरा होता था
0: जी।
1: तो दूसरा नंबर यह है कि जब हम जाते थे ना, तो 1970 की बात है, तो हम दिल्ली गए थे, दिल्ली मकेरिया से दिल्ली का 7 रुपए ट्रेन में किराया लगता था
0: जी।
1: तो 26 जनवरी का दिन था, तो हम गए, तो वहाँ पर जाकर के मैं और मेरा दोस्त, तो वहाँ पर सीटें बुक होती थी, उसका किराया लगता था 5 रुपए
0: जी,
1: तो सीटें सभी बुक हो गई थी, तो हम लेट पहुँचे, तो उसमें उसने बोला भाई 10 रुपए किराया लगेगा। हमने कहा हम तो 7 रुपए में यहाँ पहुँच गए इतनी दूर से
0: जी,
1: तो हम 10 रुपए मांग रहे, चलो दे दिया। देखा परेड देखी
0: जी
1: 26 जनवरी की। उसके बाद फिर क्या हुआ कि
0: कहानी तो कोई आई नहीं, सिर्फ बस की छत पे चढ़ने के सिवाय जी।
1: कहानी अब बता रहा हूँ ना, फिर मैं गया मकेरिया से कटरा जम्मू वैष्णो देवी गया, तो जब आया तो मेरा एक बैग था, एक उसमें अपने कपड़े ही थे और कोई कोई कीमती सामान तो था नहीं
0: जी।
1: तो वापसी पे कटरा से जब मैं जम्मू से बस पकड़ी, तो मैं नीचे उतरा कुछ खाने पीने के लिए, तो बस छूट गई, तो फिर मैंने दूसरे ड्राइवर को बोला, मैं कहा भाई मेरा सामान छूट गया है, तो बस जरा जल्दी से तेज चलाना, तो मैंने एक तो डबल किराया दिया और मेरा वो कपड़े जो भी सामान था वो भी छूट गया। ये कहानी है और तो कोई कुछ खास नहीं है।
0: आओ, उस समय ऐसा होता था, फोन भी नहीं होते थे, आजकल तो बस ड्राइवर के कंडक्टर के हम फोन नंबर होते हैं तो बात कर लेते हैं और अपना सामान जो है वो रखवा लेते हैं कि हम वहाँ जाकर ले लेंगे, है ना
1: जी। ने बोला कि टिकट संभाल के रखो दूसरी बस की, अगर उसमें सामान मिलेगा तो ये हम बता देंगे, इतने टाइम पे ये बस चली थी तो तुम्हारा सामान मिल जाएगा
0: जी।
1: लेकिन अभी तक मिला नहीं, ये 1970 की बात है
0: जी। आप उस बात को याद करते रहिए, शायद मिल जाए, कभी ना कभी मिल ही जाएगा वो सामान भी आपको जी। कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद संगीता जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड,
0: आप भी इनकी तरह अपने सफर की कोई किस्सा या कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन नंबर है 01892224391।
2: और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना छोटे

0: सफर बस का हो, ट्रेन का हो, कोई ना कोई किस्सा या कहानी बन ही जाती है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमने एक और एक्स्ट्रा बार आपको नमस्ते करके जवाब दिया है जी। कौन बोल रहे हैं जी, बताइए।
1: जी बड़ी दूर से बोल रहे हैं, मेरा एक किस्सा है। हम लोग खेतनगर से आ रहे थे ना जी।
0: जी
1: तो हम लोग एक वहाँ पर कैब चलती है, वो कैब बुक की थी
0: जी।
1: और कैब बुक करने पे क्या हुआ कि पिछली सीट पे ना कोई नहीं बैठता था
0: जी।
1: तो मैं और मेरे साहब बैठ गए पिछली सीट पे। फिर हुआ क्या कि रास्ते में एक जगह आती है पीड़ा, वहाँ पे राजमा चावल बड़े फरी फेमस है
0: जी। जी
1: तो हमने वहाँ राजमा चावल खाए
0: जी।
1: और राजमा चावल खाने के जैसे ही हम क्या हुआ कि थोड़ा सा सफर तय किया हमने, और जो हमारे ड्राइवर साहब थे उन्होंने सारी खिड़कियां लॉक

0: नाम नहीं बताया आपने, और कितनी दूर से आप बोल रहे थे उसके बारे में बताइए, कहाँ से बोल रहे थे आप?
1: हाँ जी, बिल्कुल जी, बड़ी हम बड़ी दूर से
0: लीजिए जी, इनकी कॉल कट चुकी है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा सा जो एक किस्सा है, जो आम ही बात है, हर जगह हो ही जाता है, कभी बस में कभी कार में, तो वॉमिटिंग आ जाती है, मन खराब होता है मोड़ों पे, ऊंचे नीचे रास्तों में। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं
2: जी? नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए
2: जी, बताना चाहेंगे, अभी हम कहीं फिलहाल तो गए थे हम घूमने के लिए, तो जैसे कि हमें जहाँ पर ट्रेन से गए थे और जहाँ पर उतरना था ना
0: जी,
2: हम वहाँ तो ना उतर सके, और मतलब 3 स्टेशन आगे निकल गए, और जब हमें पता चला कि हम आगे निकल गए हैं और वापस हमें जहाँ पे जाना था उस समय पे, तो हम नहीं पहुँच सके वहाँ पर, लेकिन
0: नहीं, आपने
2: फिर वापस...
0: आप क्यों नहीं उतर सके, क्या हुआ, सो गए थे क्या? जी
2: जी नहीं, सोना का नहीं हुआ था, मैं और एक मेरा दोस्त था ना, हम ऐसे बिजी हुए, मतलब बातें करते करते हमें पता नहीं चला, और फिर आगे जाके किसी से पूछा हमने कि हमें वहाँ पे उतरना था, वो बोले कि वो स्टेशन तो 3 स्टेशन पीछे रह गया, अब आप वापस बस में जाइए या फिर कोई ऑटो रिक्शा करके वापस वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने हमें फिर बताया।
0: अच्छा जी,
2: हाँ जी,
0: फिर
2: और एक बात और है, हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे पहुँच तो गए लेकिन थोड़ा समय लगा हमें, वो तो एक किस्सा मुझे याद है अभी तक। और एक और किस्सा याद है मुझे, वो है बस का है, कि हम बस में जा रहे थे कहीं, और जहाँ पर उतर हमारे पास में कुछ खाने की चीजें भी थी, उसमें फल थे, ऐसे थे ना
0: जो, जी जी
2: हाँ, वो फल वगैरह थे, हम जा रहे थे रास्ते में, अब वो एक जो ठेला था ना, वो किसी वजह से मतलब पीछे से थोड़ा सा फट गया था, और जैसे फटा और हम बैग उतार के नीचे गए बस से, तो जितना भी सारा सामान था ना हमारा बैग में, वो सारा नीचे एकदम से गिर गया, तो एक भी वो किस्सा भी मुझे अभी तक याद है। फिर
0: वो आपके सारे फल जो है वो रह गए, गिर गए रास्ते में, किसी ने उठाए तो नहीं,
2: कुछ
0: नहीं उठाए आपने दोबारा
2: उठाए, लेकिन वापस वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहे ना, हमने किसी मतलब डस्टबिन में फिर डाल दिए उनको।
0: अच्छा जी जी, चलिए बहुत अच्छी चीज। अच्छा एक और है,
2: एक और,
0: जी
2: हाँ एक और किस्सा है, जो सर्दियों में जो लड्डू बनाए जाते हैं ना,
0: हाँ जी,
2: वो हम मतलब थोड़ा बाहर जाने था, मतलब
0: क्या बोलते हैं उनको, उनको आपकी तरफ क्या बोलते हैं उन लड्डुओं को?
2: मोगर बोलते हैं,
0: मोगर। अच्छा, यहाँ पर पंजीरी बोलते हैं, पंजीरी के लड्डू ड्राई फ्रूट्स के होते हैं। जी
2: जी बिल्कुल, ड्राई फ्रूट से बनाए जाते हैं उनको, तो हमें मतलब 15 दिन के लिए बाहर जाना था, तो हमने वो लड्डू बना के अपने पास रखे, और हम ट्रेन में बैठ के, अब जो वो लड्डू का जो हमारा बैग था ना, हम हड़बड़ाहट से जब उतरे ना स्टेशन पे, तो लड्डू का बैग अपनी ट्रेन में ही छोड़ दिया उस ट्रेन में, अब बस तो थी नहीं, तो हम वापस बस वाले से ले ले, अब बता नहीं वो ट्रेन में हमारे लड्डू कहाँ गए, अब तक हमें याद नहीं है।
0: चलिए किसी को मिले होंगे, उन्होंने खा के अपनी सेहत बना ली होगी। जी
2: जी बिल्कुल, सबसे अच्छा किस्सा मुझे रहा वो लड्डू वाला, काफी जब हम याद
0: वो ज्यादा रहता है, हाँ ज्यादा याद वो रहता है आपको। जी हाँ जी,
2: हाँ,
0: जी
2: याद भी
0: बहुत ही अच्छा किस्सा है, और किसी की सेहत बन गई आपके उधर से बनाया हुआ, आपकी मम्मी ने बनाया हुआ,
2: जी हमारे लड्डू पता नहीं किसने खाए होंगे।
0: जी चलिए जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और
2: मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं कार्यक्रम शुरू से सुन रहा हूँ, जो श्रोता अपनी बातें बता रहे हैं ना, बड़ा अच्छा अच्छा लग मतलब लग रहा है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद जी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर इससे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए, समय बहुत ही कम है, तो जल्दी से कॉल मिला लीजिए।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी। जयकरण साहब जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते। बहुत
0: जी
1: ही बढ़िया
0: बहुत ही बढ़िया। जी बहुत ही बढ़िया चाहिए। और सफ़र
1: और
0: की कोई खूबसूरत सी याद है तो आप बताइए, हमारे साथ साझा
1: बस मैं
0: कीजिए।
1: बताने
0: समय
1: पा रहा हूँ।
0: बहुत ही
1: हाँ
0: कम है बस।
1: जी हाँ जी हाँ जी बता रहा
0: जी
1: हूँ मैं, शॉर्टकट में बताऊंगा
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल
1: एक बार ना हम धर्मशाला से हरिद्वार जा रहे थे,
0: जी
1: रास्ते में एक ऐसे भले आदमी बैठ गए मेरे पास।
0: जी
1: उन्होंने नागपुरी संतरे जो होते हैं ना, मीठे भी बहुत होते हैं,
0: जी
1: वो लिए थे और एक मुझे एक अपने को देते देते हमें सफर का पता ही नहीं चला। वो मैं मना भी कर रहा था, बीच बीच में करना भी पड़ता है। तो
0: जी क्योंकि घर
1: वो
0: से
1: मतलब
0: हिदायत मिली होती थी पहले कि कोई भी जिसको हम जानते नहीं है उनके हाथ से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, नहीं खानी है।
1: हाँ, तो
0: जी
1: वो बैल का जमाना कुछ लगता जी, भला
0: जी
1: जमाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और हम खाते गए, सफर का पता ही नहीं चला। तो मैं उस आदमी को आज मैं जो विषय रखा ना, आज मैं उसे याद करूंगा।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी आप उसे याद कीजिए और सुनते रहिए इस गीत को भी और FM धर्मशाला को भी। कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, आज के एक घंटे के सफर में हमारे साथ भी कुछ नए नए साथी जुड़े और उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी बातें और यादें हमारे साथ साझा की, और इनकी भी यही बातें और यादें हमारे साथ रहेंगी। तो अब रेडियो का सफ़र जो है वो ख़त्म होता है, मतलब कि गीतांजलि कार्यक्रम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। संगीता को अनुमति दीजिए, और चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया सुरेंद्र कपूर ने, और प्रस्तुतकर्ता जतिंद्र पाल सिंह। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।

सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम है गीतों का कारवां और कार्यक्रम की पहली पेशकश आप सुन रहे हैं आकृति कक्कड़ और सोहम चक्रवर्ती की आवाजों में।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: Sporty look standard 6 airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. Ye hai epic.

0: मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल, अब पाइए पावरफुल जेड सीरीज इंजन के साथ जो हर ड्राइव को बनाए मजेदार और इकोनॉमिकल, और अब मिलेगा टोटल बेनिफिट अप टू ₹35,000। स्टाइल, सेफ्टी और सेविंग सब एक ही पैकेज में, तो देर किस बात की, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर आज ही विजिट कीजिए और स्विफ्ट पेट्रोल घर लाएं। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार को। प्रीतम का संगीत निर्देशन है, बोल है इरशाद कामिल के, और ये फिल्म है वंस अपॉन टाइम इन मुंबई।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म के इसी गीत के साथ थे। कार्यक्रम गीतों का कारवां अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज इस लोक भजन के साथ जिसे गाया है विक्रांत संदेश और साथियों ने।

सुनील राणा का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। और ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत, जिसे गाया है मान सिंह और साथियों ने।

करनैल राणा और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम पहाड़ों के सुर अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से

0: मोदी के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियां, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बिरला ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं मानवता, प्रेम, समानता, सेवा और करुणा का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि ये शिक्षाएं हमें सत्य के मार्ग पर चलने और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कामना की कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं से समाज में शांति, भाईचारा और एकता बढ़े। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और उनका निश्चित कार्यकाल तय करना बेहद जरूरी है। शिमला में एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक कार्यकाल तय नहीं होगा तब तक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं लाए जा सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षक छात्र अनुपात देश में बेहतर है और औसतन 10 छात्रों में से एक शिक्षक है, जबकि लाहौल स्पीति यह अनुपात 3:1 है। उन्होंने कहा कि अब स्कूलों और कॉलेजों को समय की जरूरत और रोजगार की मांग के अनुसार तैयार करना होगा।
2: हम अपने शिक्षा को सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं रख सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कई दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की आवश्यकता। हमने बहुत नियुक्तियाँ की है और जो आपका पीटीआर रेशियो, इसे प्यूपल टीचर रेशियो कहते हैं, वो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में 1:10। लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं आपके लाहौल स्पीति में जहाँ पर 3 बच्चों के पीछे एक टीचर है, तो और जो आपकी NEP पॉलिसी बोलती है वो 60 के पीछे 2 टीचर बोलती है, जो मानक भी लगभग यही है। लेकिन मानकों के साथ युक्तिकरण बड़ा महत्वपूर्ण, और निश्चित रूप में पिछले 15 वर्षों में लगभग 4,00,000 बच्चे आपकी सरकारी स्कूलों में कम। मुख्य कारण यही है कि समय के अनुसार हम अपनी सोच को परिवर्तन नहीं ला पा।
0: राजस्व व जनजाति विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल किन्नौर जिले के छितकुल में विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इनमें 3,50,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इको पार्क व 2,12,00,000 रुपए की लागत से रिम सरंग से रानीकंडा तक किए जाने वाले वन्य जीव सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास प्रमुख रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि छितकुल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए भविष्य में राफ्टिंग शुरू करने और उच्च स्तरीय राफ्टिंग प्रतियोगिता करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2019 में आज ही के दिन ये योजना आरंभ हुई थी। ये योजना पात्र भूमिधारक, लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु से नियमित मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसानों की वृद्धावस्था स्थिरता और मानसिक शांति से बीते। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से प्रतिमाह न्यूनतम 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली लोकगीतों और गीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।

कार्यक्रम पहाड़ों की गूंज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। ये रहा कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

मान सिंह और सुनील राणा के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम है गूंज पहाड़ों की और ये रहा कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत।

प्रदीप परदेसी और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम जय हिंद।

कार्यक्रम का पहला देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वीरजारा से। इस गीत को गाया है गुरदास मान, उदित नारायण और लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम का अगला देशभक्ति गीत लीजिए सुनिए, सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में। फिल्म है लक्ष्य,

हिंदुस्तान की कसम। लीजिए अब इस फिल्म का ये देशभक्ति गीत आपको सुनवाते हैं। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, उदित नारायण और अलका याग्निक की।

केसरी फिल्म के इसी देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गाया ये देशभक्ति गीत आपने सुना, जिसे हमने लिया था फिल्म कर्मा से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, फिल्म है आशिकी।

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। आरडी बर्मन का संगीत निर्देशन था, बोल थे जावेद अख्तर के। कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म है जिस्म। अमित सक्सेना का संगीत निर्देशन है और बोल है नीलेश मिश्रा के।

राहत फतेह अली खान और श्रुति पाठक के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम सुनो सखी।

नमस्कार सखियो, आप सुन रही हैं अपना कार्यक्रम सुनो सखी। जी हाँ, जहाँ बातें होती हैं दिल की, किस्से होते हैं जिंदगी के। इसी कार्यक्रम में चर्चा होती है उन छोटे बड़े खट्टे मीठे एहसासों की, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और भी खास बनाते हैं। जी हाँ सखियो, सुनो सखी, इसी कार्यक्रम में बातें होती हैं हंसने मुस्कुराने की, कभी तो कभी रिश्तों को निभाने की, कभी अपने सपनों को पूरा करने की, तो कभी अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं को और गहराई से जानने की। तो आज भी आप पहुंचे हैं सखियों हम लेकर आपका वही जाना पहचाना प्यारा सा कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के संग। तो जल्दी से सखियों बढ़ा लीजिए अपने रेडियो सेट की आवाज़, क्योंकि हो चुका है कार्यक्रम सुनो सखी का आगाज। और शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा सफर, जिसमें बातें आपकी, मेरी और हम सभी की। जी हाँ, और साथ ही साथ उस जिम्मेदारी की भी, जो हर माता पिता और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है, हमारे बच्चे। जी हाँ सखियों, हमारे बच्चों को सशक्त बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। क्या लगता है आपको, कौन है एक सशक्त बच्चा? क्या जो पढ़ाई में अच्छे अंक लाए वो, या फिर जो अपने फैसले समझदारी से ले, जो अपनी बात हजारों लोगों के सामने भी पूरे आत्मविश्वास से कह दे वो, या फिर जो कठिन परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहकर चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखे, या वो बच्चा जो सही गलत में फर्क समझ सके। शायद बहुत सारे पैमाने हैं सखियों एक सशक्त व्यक्तित्व के, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनके अंदर वो मासूमियत, वो भोलापन, वो नटखट चुलबुलापन अच्छा लगता है, उनकी वो चंचलता, उनका वो लड़कपन, छोटी छोटी खुशियों को जी लेना, बस यही तो है बचपन। तो उन्हें जी लेने से दे सकिए उनका बचपन। और रही बात उन्हें सशक्त बनाने की, आत्मनिर्भर बनाने की, तो वो हमारा काम है, खासकर हम सखियों का, हम माताओं का। छोटी छोटी बातों के जरिए सखियों उन्हें हम बता सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं कि किस काम को कैसे करना है। और हाँ, अगर कोई गलती उनसे हो जाए तो सीधे डांटने की बजाय उन्हें ये बताना है कि इस गलती से उन्होंने क्या सीखा, और हाँ, अगली बार क्या वो ये गलती करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही सखियों बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा, कभी वो अपनी बात जब हमसे कहते हैं तो कई बार हम उन्हें बीच में ही रोक देते हैं, तो उन्हें उनकी बात कहने दें, उनकी बात पूरी करने दें, उन्हें बीच में ना रोकें। साथ ही घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों में भी उन्हें शामिल करें। इससे सखियों उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी, और साथ ही इस बात का एहसास भी उन्हें होता है कि हाँ, उनके पक्ष का भी, उनके निर्णय का भी कोई महत्व है। अच्छा सखियों, एक और बात, हर बच्चे की अपनी एक प्रतिभा, एक अपनी गति होती है, और हम तो ये कहते हैं कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। तो उसकी तुलना की बजाय उसके प्रयास और उसकी प्रगति की सराहना करें, उन्हें प्रेरित करें, और आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपना सहयोग उन्हें देती रहें। और सखियों, आप भी समझ ही चुकी होंगी कि अब इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इसी विषय से जुड़ी हुई बातें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं गीत संगीत की तरफ। आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: Multilux Standard 6 Airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. Yeh hai epic new Maruti Suzuki Swift Petrol. Ab paye powerful Z-Series engine ke saath, jo har drive ko banaye mazedar aur economical. Aur ab milega total benefit up to Rs. 35,000. Style, safety aur savings sab ek hi package mein. To der kis baat ki, apne nazdeeki Maruti Suzuki Arena showroom par aaj hi visit kijiye aur Swift Petrol ghar laaye. Jaldi kijiye kyunki kimaton mein 20,000 rupaye tak ki badhotri jald hone wali hai. TNC apply.
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
9: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
8: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
9: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
8: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
10: जी सखियों, गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी सखियों।

का आपके अपने कार्यक्रम सुनो सखी में बात हो रही है सखियों, आज बच्चों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की। तो सबसे पहले तो उन्हें जीवन के छोटे छोटे कौशल सिखाएं, यानी छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे समय का सही प्रबंधन, पैसों की समझ, स्वच्छता और अपनी चीज़ों की देखभाल जैसी बातें उन्हें सिखाएं। अच्छा, एक और बात सखियों, हर काम उनका खुद ही ना करने लग जाएं। अगर उनके छोटे छोटे काम भी हम माता पिता करेंगे तो फिर वे दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं। तो उम्र के अनुसार थोड़े बहुत काम उन्हें खुद करने दें, जैसे अपनी किताबों की अलमारी वो सही से मैनेज कर सकते हैं, अपना स्कूल बैग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पैक कर सकते हैं, अपनी यूनिफॉर्म उतार कर अच्छे से उसे रखना, अपने सामान की देखभाल करना। तो इस प्रकार सखियों छोटी छोटी चीज़ें उन्हें खुद करने दें। कई बार बच्चों के सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं, कई परेशानियां भी आती हैं, तो पहले उनका पक्ष जानने की कोशिश करें कि आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है। जब बच्चा सोचेगा, समझेगा और अपना पक्ष आपके सामने रखेगा, फिर सखियों उसके बाद उसे थोड़ी सी अपनी गाइडलाइन दें, थोड़ा सा अपना सहयोग दें और उसे बताएं कि ये इसका हल है, बस हो जाएगा। इस प्रकार सखियों कोई भी समाधान जब बच्चा खुद निकालने की कोशिश करता है तो उसकी तर्कशीलता भी बढ़ती है और साथ ही साथ सोचने का मौका तो उसे मिलता ही है। अच्छा सखियों, बच्चों को जिंदगी की हर मुश्किल से बचाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलों का सामना करने का आत्मविश्वास उसे देना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही सच्चा सशक्तिकरण भी है उनका। और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं देकर उन्हें हर चीज़ के लिए आदि तो नहीं बना रहे, या छोटे छोटे संघर्ष यहाँ ज़रूरी हैं उनके लिए, कहीं हम उन्हें कम तो नहीं कर रहे। बिल्कुल सखियों, इस बात का भी ध्यान रखना है। और हाँ, बच्चे की गलती पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, इस बात का भी बहुत महत्व है। अच्छा, डांटते हैं हम उन्हें या फिर बातचीत से हल निकालते हैं? बहुत बार सखियों डांट ही देते हैं। हमारी जिस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है उनकी गलती पर, इसका असर सखियों उनके व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा पड़ता है। कई बार हम उन्हें इतना डांट देते हैं कि बच्चा अगली बार अपनी गलती होने पर हमें बताने की बजाय वो बातें छुपाने लगता है। तो उन्हें ये ज़रूर बताना है कि कोई भी हार या कोई भी हमारी गलती कुछ नया सीखने का हमें अवसर देती है। और आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि क्या होगा अगर कुछ नहीं होगा, तो अनुभव होगा। बिल्कुल, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें तजुर्बा होगा और वो उस अनुभव को लेकर जब हम साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। एक और बात सखियो, बच्चे को सभी का सम्मान करना भी सिखाना है। दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, ये भी उनकी एक अच्छी परवरिश का हिस्सा है। बहुत बार बच्चे हमारे लाड़ प्यार के कारण थोड़े से आउटस्पोकन हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं या फिर ज़िद्दी हो जाते हैं, तो वो कहीं भी कुछ कह देते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इस बात के बारे में कई बार वो नहीं सोचते हैं। तो सबसे बड़ी बात की सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये बात उन्हें बतानी है और कहाँ क्या बात कहनी है, किसी बात से या किस बात से किसे बुरा लग सकता है, छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है, ये भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। और ये सारी बातें सखियों हम माताएं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बता सकती हैं। बातें सखियों और भी, लेकिन फिलहाल फिर से समय हो रहा है एक म्यूजिकल ब्रेक का। एक और प्यारा सा गीत सभी सखियों की नज़र।

कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आपने सुना। और अब कार्यक्रम में थोड़ी सी और बातचीत, जी हाँ, उसी विषय पर। सीखिए बच्चों को मेहनत और धैर्य का महत्व भी बताना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे हमारी लगातार मेहनत और हमारे प्रयास और साथ ही साथ हमारा धैर्य होता है। बहुत बार हम कोई काम करते हैं लेकिन उसमें हम सफल नहीं होते तो क्या अगली बार उसे करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, अगली बार तो हम दुगनी मेहनत से काम करते हैं और हमारे एफर्ट्स भी दुगने हो जाते हैं। अच्छा, अनुभव यानी तजुर्बा भी हमें थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि पिछली बार यहाँ कमी रह गई तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को भी इसी तरह से मोटिवेट करते रहना है, प्रेरित करते रहना है। और हाँ, मानो फिर भी सफल ना हो पाए तो क्या सब कुछ छोड़कर बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ काम आता है हमारा धैर्य, हमारी सहनशीलता, हमारा पॉजिटिव, हमारा नज़रिया, साथ ही साथ हमारा सब्र, जो कभी कभी टूटने लगता है ज़रूर, लेकिन सखी उसे टूटने बिल्कुल नहीं देना है। बच्चे को प्रेरित करते रहना है और हाँ, उन्हें यही कहना है कि आप कर सकते हो। एक और बात सखी, जिस प्रकार के माहौल में इन दिनों हम सभी जी रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, डिजिटल दुनिया है, तो इसके प्रति भी बच्चे को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी ना साझा करें, अनजान लोगों से सोशल मीडिया पर बात ना करें, इस बात के प्रति भी उन्हें सजग करते रहना है। एक और बात कि बच्चा कितनी देर फ़ोन चला रहा है, कौन सी साइट चला रहा है, इस पर भी हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो सखियो अब इसी के साथ थोड़ी सी बातचीत आज के दिन की। जी हाँ, आज प्राथमिक चिकित्सा दिवस भी हम साथ ही साथ मना रहे हैं, तो आपातकालीन स्थितियों या दुर्घटनाओं के दौरान जब तक जो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है उसे डॉक्टरी सहायता ना मिले, तब तक उसे दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा उसका जीवन बचा सकती है। और इसका प्रशिक्षण स्कूलों में भी दिया जाता है और हम भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सांसें रुक जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाए, तो छाती दबाकर उन्हें हम कृत्रिम सांस दे सकते हैं, है ना। या किसी घाव से बहुत ही अधिक खून बह रहा हो तो पट्टी से उसे दबाकर रखना चाहिए ताकि खून बहुत ज़्यादा ना बहे। अच्छा, गले में जब कुछ फंस जाता है तब भी हम उसे फंसे हुए भोजन को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जल जाते हैं अगर हम, तो वहाँ पर हम उन्हें ठंडे बहते हुए पानी के नीचे उस हाथ को या जहाँ भी हमारी हम जले हैं उस हिस्से को रख सकते हैं। हड्डी अगर टूट जाए तो उसे हिलाने डुलाने से बचना है और साथ ही साथ उसे सपोर्ट देते रहना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सखियों, यही प्राथमिक चिकित्सा में आती है, क्योंकि जब तक डॉक्टर हम तक नहीं पहुंचते हैं या वो नहीं आते हैं, सहायता हमें नहीं मिलती है डॉक्टरी सहायता, तब तक हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब चलते चलते फिर से गीत संगीत की तरफ रुख कर लेते हैं, एक और प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। ये रहा कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

जी सखियो, इस गीत के साथ अब कार्यक्रम का समय भी हो रहा है संपन्न। चलते चलते यही कहना चाहेंगे, अपने बच्चों से प्यार करें, उन्हें खुलकर जीने का मौका दें, और जहां आपके मार्गदर्शन की उन्हें जरूरत है, उन्हें अपना मार्गदर्शन जरूर दें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले किसी कार्यक्रम में कुछ नई बातों, कुछ नए तरानों के साथ होगी आपसे मुलाकात। बता दें सकिया, आपको इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। इसी के साथ प्यारी सखियो, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के इस सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मौजूद हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, प्रधानमंत्री ने अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है इस शिखर सम्मेलन से अलग, और अभी और किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आज कार्यक्रम है?
1: हाँ जागृति, आज का दिन राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से करीब 1.5 घंटे बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से ही ब्रिक्स के सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इसके अलावा इथियोपिया ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में

0: मौजूद अवसरों पर चर्चा हुई। जागृति आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की पहली यात्रा है। जी जागृति।
1: जी धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। और इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम गेब्रेसियस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से क्वांगचो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। ये सेवा ऐसे समय फिर शुरू हो रही है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन ऐसे समय में बंद की गई है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड गुजरात कोंकण गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। ओडिशा तेलंगाना पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु पुदुचेरी आंध्र प्रदेश कराईकल विदर्भ बिहार राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली की चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: जवाब हमें मिल गए हैं शशि कपूर, नंदा आगा, शमी, कमल कपूर, और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत वादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावनात्मक और रूमानी रिश्ता कहलाता है। आजकल शहरों की भागदौड़ और समाज के बंधनों और तनाव से दूर नदी की लहरों में नाव पर सवार होकर एक अलग सुकून का एहसास होता है। जब आप अपने हम सफ़र के साथ कश्ती पर सवार होकर कुछ पल के लिए प्यार भरी वादियों में अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुजारते हैं तो रिश्तों का जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जिस रेडियो में विविध भारती चैनल ना हो उस रेडियो को हमें सुनना नहीं। विविध भारती का साथ है तो मुझे क्या कमी है, दुख में भी मिल रहा सुख।

ऊन है जी, शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है, तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ, और तूफानों से गुजर कर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है, अंतर शब्दों में नहीं उसके कहने के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है। फिर भी उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था, माझी ने पतवार थामी तो समझ आया, हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं, तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की, इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके, और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं, इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया? राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें, और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का ये किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर नंदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम है विनोद मेहरा। बाल कलाकार थे मास्टर बॉबी, जिनका असली नाम था मासूमा, और साथी कलाकार थे बिंदु मदनपुरी, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल। आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम। जिंदगी के कई रंग हैं, कई सपनों की खूबसूरत दुनिया, कहीं अपने और पराए हैं, कहीं खुशियों की आहट है तो कहीं मन में उठता तूफान। एक माझी सबको नदी पार कराता है पर खुद किनारे की तलाश में रहता है, पर एक दिन समझ आया किनारा बाहर नहीं मन के भीतर है। वक्त के साथ इंसान खुशियों और गमों की धूप छांव से गुजरता हुआ अपनों से मिले अनुभवों के साथ थोड़ा संजीदा हो जाता है। दिन कितने भी कम हो, ख्वाब देखने की और तूफान को किनारा बनाने की चाहत ही इंसान को जिंदा दिल बनाए रखती है। एक साथी ने लिखा है, मैं पिछले सप्ताह ही कश्मीर की वादियों में समय गुजार कर आया हूँ। मैंने

डल झील में पत्नी के साथ गाना भी गाया, माझी नैया ढूंढे किनारा। गाने हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे हिम्मत हारे व्यक्ति के लिए तुझको चलना होगा। एक साथी ने लिखा है कि जब जब फूल खिले शशि कपूर नंदा और कश्मीर के डलहौजी में इसे फिल्माया गया था। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा और नेकी कर दरिया में डाल, मानो तो गंगा हूँ ना मानो तो बहता पानी। हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया मेरा मन तेरी दो आँखों में। हुस्न पहाड़ों का, ऐसे मुहावरे और बहुत सारे गाने गीत जिसमें किसी नदी पहाड़ का नाम आया है तो लिख दे। और एक अभिनेता बैलगाड़ी चलाते हुए नदी सागर की बातें करते हुए नदी ताल तलैया का गीत गा रहे हैं, तो बता दीजिए कि कौन से अभिनेता हैं वो। एक गैम्बलर और उसका तेज तर्रार हम शक्ल CID पुलिस अधिकारी, दोनों की पहचान को लेकर रोमांचक और भ्रमित करने वाले मोड़ आते हैं। अंत में गैम्बलर और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर खतरनाक अपराधियों की साजिश को नाकाम कर देते हैं। तो बताइए कि द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन की दोनों भूमिकाओं के नाम क्या थे और उनकी दोनों नायिकाओं के नाम भी बताइए। और ये जो गीत अभी आप सुनने वाले हैं, ये किस देश में, किस लोकेशन पर इसे फिल्माया गया था, और इस गीत में जो गायक गा रहे हैं उनका नाम भी जरूर लिख दें।

0: দায়িত্ব দিস ইজ টর্চার কাণ্ড তাই সরমীয়
1: सुनाओ ना।

साथियों, आपके जवाब हमने देख लिए और अभी पढ़ देते हैं। जय विजय अमिताभ बच्चन का नाम था उन दो किरदारों का, और जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, इफ्तखार, मदन पुरी, हेलन रंजीत और सुजीत कुमार उनके साथी कलाकार थे। और इस गीत की शूटिंग हुई थी वेनिस इटली की बेहद मशहूर झील ग्रैंड कैनाल में गोंडोला नाव पर। और इस गीत के बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई देती है अमोरे मियो, वो इटालियन भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय गायक शरद कुमार ने आवाज़ दी है। और बैलगाड़ी चलाते हुए जो गाना गा रहे हैं वो अभिनेता है संजीव कुमार। फिल्म का नाम है अनोखी रात, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। और भारत में बहने वाली नदियों के नाम भी हमें मिल गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती, चंबल, गंडक और घाघरा नदियाँ।

हमारे साथियों ने जो मैसेज भेजे हैं वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और सबसे छोटी नदी अलवर के पास अरवरी नदी है जो करीब 45 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। अनोखी रात ओरे ताल मिले नदी के जल में, सागर में संजीव कुमार। एक साथी ने लिखा है कि सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड की क्रूज में 2 नाइट 3 दिन का सफर किया है मैंने। एक साथी मित्र ने लिखा है जिसका नाम है

जीवनधारा उसका कोई नहीं किनारा। अगला कमेंट है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, बेटी और दामाद 2019 में केरल गए थे। तब हम बोट हाउस पर ठहरे थे, सुबह से पूरा घूम कर आए। दोपहर का खाना, नाश्ता और रात का डिनर भी बोट पर ही ठहर कर किया। दूसरे दिन सुबह बोट से बाहर आए, बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए, जैसे जैसा मैसेज आपने लिखा था हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया। साथियों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये एक बेहद संवेदनशील और लोकप्रिय फिल्म है नैया, जिसकी कहानी गंगा नदी किनारे बने एक छोटे से गांव की है। ये फिल्म मानवीय रिश्तों, निस्वार्थ प्रेम, समाज के बंधन और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार नज़र आ रहे हैं, और इस फिल्म नैया के निर्देशक का भी नाम हमें बताएं। तब तक सुनते हैं यही गीत, आपके जवाबों का हमें है इंतज़ार।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। सोनू और गीता की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी का निर्देशन किया था प्रशांत नंदा ने, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जरीना वहाब के साथ नज़र आए थे। और इस गीत में आवाज़ आपने सुनी येसुदास की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन, फिल्म का नाम था नैया। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि सिंध नदी के किनारे बसा है मेरा गांव। एक साथी ने लिखा है कि मेरी सोच ये है कि जीवन में हम सफ़र ऐसा होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, जो एक बार अपने साथी का हाथ पकड़ ले तो ता उम्र छोड़े नहीं, अपने हम सफ़र का साथ मरते दम तक निभाए, यही तो सच्चा प्यार और सच्चा साथ है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे घर में कोई आ गया था तो आधा प्रोग्राम तो निकल गया। अगला कमेंट है कि मेरे शहर में गंगा है, थोड़ी दूर पर पुनपुन भी मिलती है और सोन भी मिलता है। गंगा नदी का प्रारंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए दूरी तय करती हुई समुद्र में गिरती है। आवाज़ की दुनिया के मेरे दोस्तों, अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाज़ है मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम हमें लिखकर भेज दें।

साथियों, आपने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए और हमने पढ़ लिए। इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, दिलीप ताहिल, मोहनीश बहल और आशीष विद्यार्थी। और ऋतिक रोशन के दूसरे किरदार का नाम था राज। ऋतिक रोशन ने बचपन में कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था, जिनके नाम हैं आपके दीवाने, आशा, आसपास और भगवान दादा। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। हमारे एक साथी ने हमें लिखा है कि मुझे इस वक्त फिल्म 9-2-11 का मशहूर गीत आजा पंछी अकेला है याद आ रहा है। ये खूबसूरत गीत नाव पर सवार देव साहब और कल्पना कार्तिक पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रात के शांत समय में फिल्म

फिल्म में दुखांत है और हीरोइन नदी में कूद कर जान दे देती है और नैया का अंत सुखांत है। एक साथी ने लिखा है, अपनी तो नीति यही है अपनी तो नीति यही काम है, आने जाने वालों को अपना सलाम है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। नर्मदा नदी लगभग 15 से 16 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है।

0: दोस्तों, ये जो गीत अभी आप सुनने जा रहे हैं, तो बताएं कौन सी झील में इस गीत को फिल्माया गया था और कौन किसको देखकर पानी में गिर गए? बताएं हमें भी, हम भी तो जाने कि इस गीत के गीतकार का नाम क्या है। जल्दी से लिख दीजिए।
1: ये चांद सा रोशन चेहरा

साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, संगीतकार ओपी नैयर और गीतकार हैं शमसुल हुदा बिहारी यानी कि SH बिहारी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को श्रीनगर जम्मू कश्मीर की मशहूर डल झील में फिल्माया गया था और निर्देशक हैं शक्ति सामंत।

और अब चलते चलते आपके कुछ कमेंट्स। गंगा की लहरें में किशोर कुमार और कुमकुम नाव पर गंगा हरिद्वार में नज़र आए। शमी कपूर गिर गए शर्मिला टैगोर को देखकर, बिल्कुल सही बात। और एक शिकायत भरा कमेंट भी किसी ने लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है कि आपने कभी मेरी टिप्पणी नहीं पढ़ी, अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे आसपास की लिखी हुई टिप्पणी को आप पढ़ती हैं लेकिन मेरी नहीं। तो देखिए अभी आपका कमेंट हमने पढ़ दिया, बने रहिए हमारे साथ, ये वादा कीजिए।

आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

त्रिवेणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, अकेलापन किसी के जीवन के लिए वरदान हो सकता है तो कोई इसे अभिशाप समझ सकता है। अकेलेपन से किसी को भय होता है तो कोई इसे अपना सबसे अच्छा साथी मानता है। अकेलेपन ने किसी के जीवन को बहुत तेरे अर्थ दिए हैं, सार्थकता प्रदान की है तो किसी के जीवन में अकेलेपन ने मनोरोगों की बाढ़ लाती है। अकेलेपन का अर्थ है किसी का साथ न होना या एकांत में होना। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य सबके साथ रहना ही पसंद करता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही करने भी पड़ते हैं। हमारे अंदर की क्षमता, प्रतिभा और रचनात्मकता का विकास हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से होता है और इसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में व्यक्ति अपने अकेलेपन को सकारात्मक ऊर्जा से वर्षों तक साधते हैं तो वे कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, और यदि वे नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाते हैं तो मनोरोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिंदगी के सफर में भी हमें अकेले ही आगे बढ़ना होता है। इस सफर में कोई साथ दे दे तो अच्छा, और ना दे तब भी प्रगति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को ही प्रस्तुत होना पड़ता है।

जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी

अकेलेपन से मन कभी कभी अशांत होता है, बेचैनी होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन को समझा बुझाकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया में जो भी उपलब्धियां हैं, सिद्धियां हैं, वे भले ही संसार के सम्मुख हों, लोगों से घिरी हों, लोग उनका उपभोग करते हों, लेकिन उनकी उत्पत्ति एकांत के माहौल में ही होती है। एकांत में ही उनका प्रकटीकरण होता है, एकांत में ही वे अपना साकार रूप लेती हैं। इसलिए चाहे हृदय को छू लेने वाली कविता हो या प्रेरणास्पद कहानी, जीवन को आसान बनाने वाले विशिष्ट आविष्कार हो या बहुआयामी अर्थ प्रदान करने वाले चित्र, एकांत के माध्यम से ही मानवता को ये अनुपम उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं नहीं, बल्कि इसे हमेशा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें।

आज से 10 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हजारों लाखों फ्रेंड्स के बीच भी कोई अकेला हो सकता है, पर सोशल मीडिया के साथ हम इसे बखूबी समझने लगे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोवर होना और बात है, जबकि वास्तविक जीवन में कोई सचमुच अपना होना दूसरी बात। आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि सोशल साइट की धूम के चलते दुनिया भर में पल भर में संबंध बनाना आसान लग सकता है। हम अपने दोस्तों को संदेश, ईमेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, पर इन सब में कोई ऐसा अपना ढूंढना जो आपको आपकी अकेलेपन से निकाल सके काफी मुश्किल होता है। इतनी सारी सोशल साइट्स के बावजूद अकेलापन अभी भी एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति अपने साथी, अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहन के साथ रहते हुए भी अकेला हो सकता है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। सोशल साइट्स नहीं, अपने सचमुच के दोस्तों और अपनों से अपने विचार मिलकर बांटें, हंसें और हंसाएं। परिजनों, माता पिता, पार्टनर, बच्चों, भाई बहन और दोस्तों से हमेशा जुड़े रहें, उनके काम आते रहें, उनकी समस्या का समाधान जितना हो सके हमें करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। यानी जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर आप मदद लेते हैं तो दूसरों के मददगार भी बने। ये बेहद जरूरी है आज के इस समय में, जब हजारों की भीड़ होते हुए भी हम कहीं न कहीं अकेलापन, तन्हाइयां महसूस करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है।
0: जी,
1: विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी
2: भी आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं

0: निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थी, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: इंडिया इनोवेशन,
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
2: फ्रॉम लैब टू मार्केट, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड,
0: 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल साधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा

0: राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबुधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है अपने हुए पराई।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज है किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है रंगोली।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है सन्यासी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नखमों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है संगम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नगमा निगार हैं शैलेंद्र, धुन है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाज़ों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं और पर्यटन को जापान से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वे टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उपमिशन प्रमुख आर मधुसूदन से भेंट के दौरान बोल रहे थे। राजेश धर्माणी इन दिनों प्रदेश के इंजीनियरिंग छात्रों के साथ जापान दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को जापान की तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और उनका निश्चित कार्यकाल तय करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक कार्यकाल तय नहीं होगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं लाए जा सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल में शिक्षक छात्र अनुपात देश में बेहतर है और औसतन 10 छात्रों में एक शिक्षक है, जबकि लाहौल स्पीति ये अनुपात 3:1 है।
1: शिक्षा को सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं रख सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कई दृष्टिकोण से परिवर्तन लाने की आवश्यकता। हमने बहुत नियुक्तियाँ की है और जो आपका पीटीआर रेशियो, जिसे प्यूपल टीचर रेशियो कहते हैं, वो हाईएस्ट है पूरी कंट्री में, 1:10। लेकिन कई ऐसे भी जिले हैं आपके लाहौल स्पीति में जहाँ पर 3 बच्चों के पीछे 1 टीचर है। तो और जो आपकी NEP पॉलिसी बोलती है वो 60 के पीछे 2 टीचर बोलती है, जो मानक भी लगभग यही है। लेकिन मानकों के साथ युक्तिकरण बड़ा महत्वपूर्ण, और निश्चित रूप में पिछले 15 वर्षों में लगभग 4,00,000 बच्चे आपकी सरकारी स्कूलों में कम हुए हैं।
0: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं मानवता को सत्य, सेवा, समानता, करुणा और सद्भाव की राह दिखाती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश लोगों को आपसी सद्भाव, सम्मान और भाईचारे की भावना के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पवित्र अवसर सभी के जीवन में शांति, सुख व समृद्धि लाएगा और मानव कल्याण के प्रति संकल्प को और मजबूत करेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच बढ़ाने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा।
0: प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है। इस दौरान उन मामलों का निपटारा भी करवाया जा सकता है जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। बीती रात भी विभिन्न जिलों में वर्षा हुई है। राजधानी शिमला व इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के समय मूसलाधार वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं चंबा जिले की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचक हैं नविता चौहान।
0: चंबा जिला के विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा इन दिनों जारी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुई इस यात्रा का राधाष्टमी यानी 19 सितंबर को आधिकारिक रूप से समापन होगा। यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत चंबा व माई भारत NSS के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय चंबा तथा बनिखेत कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद व युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में देश की राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक BLTM 2026 के रूरल टूरिज्म बाजार में चलो चंबा अभियान के तहत जिला चंबा की सशक्त मौजूदगी दर्ज की गई। लंपी स्किन रोग की दस्तक से जिला चंबा में पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत चंबा व माई भारत NSS के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय चंबा तथा बनिखेत कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद एवं युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान देशभर में आयोजित गतिविधियों के साथ प्रतिभागियों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को भी सुना। कार्यक्रम में स्थानीय खेल प्रतिभाओं की भागीदारी विशेष आकर्षण रही। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय चंबा में कार्यरत NSS के जिला कार्यक्रम अधिकारी अविनाश पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को विद्यार्थियों ने सुना और इससे अवश्य उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी होता है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को देश दुनिया से रूबरू करवाने में चलो चंबा अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में देश की राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित प्रतिष्ठित बिजनेस प्लस लीजर ट्रैवल एंड माइक BLTM 2026 के रूरल टूरिज्म बाजार में चलो चंबा अभियान के तहत जिला चंबा की सशक्त मौजूदगी दर्ज की गई। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में चंबा के दूरदराज गांवों अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य लोक संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को देश विदेश के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल विशेषज्ञों के समक्ष प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इनमें खजियार व डलहौजी के प्राकृतिक वन क्षेत्र पांगी और भरमौर की समृद्ध जनजातीय परंपराएं ट्रैकिंग रूट्स और पौराणिक इतिहास शामिल रहे। लंपी स्किन रोग की दस्तक से जिला चंबा में पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। इस रोग से ग्रसित कई पशुओं का उपचार जिला में चल रहा है। हालांकि लंपी रोग से बचाव को लेकर विभाग

0: पशुओं को सुरक्षा कवच देने के लिए जुट गया है। इसी दिशा में विभाग ने जिले में पशुओं के व्यापक टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। जिले में करीब 21,000 मवेशियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक करीब 15,000 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पशुपालकों को बीमारी के लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। जिला चंबा में टैक्सी ऑपरेटरों से ग्रीन टैक्स के नाम पर की जा रही अतिरिक्त वसूली को लेकर चंबा टैक्सी यूनियन ने कड़ा ऐतराज जताया है। यूनियन का आरोप है कि टैक्सी वाहनों से साल में एक बार 1500 रुपए ग्रीन टैक्स के रूप में पहले ही लिया जा रहा है, लेकिन अब भरमौर में दोबारा ग्रीन टैक्स के नाम पर छोटी गाड़ी से 100 और बड़ी गाड़ी से 200 रुपए की अतिरिक्त वसूली की जा रही है। चंबा टैक्सी यूनियन ने इस मामले को लेकर उपायुक्त चंबा को पत्र सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। चंबा जिले में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित किए गए इस पनीर की अगर कोई बिक्री करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग ने छापामारी अभियान भी शुरू कर दिया है। दुकानदारों, होटल संचालकों और खाद्य कारोबारियों को भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उदासीन आचार्य श्री श्री चंद्रशिला मंदिर में श्री चंद्र भगवान उदासीन संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री चंद्र जयंती चंबा में धूमधाम के साथ आयोजित की जाएगी। जयंती के उपलक्ष्य पर 18 सितंबर से शुरू होने वाले कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेंगे। पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के तहत चंबा जिला को 5 नई इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें जल्द ही विभिन्न रूटों पर संचालित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे चंबा जिले की।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी, मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि, पलक, अमीशा, अनुष्का, आशीष, लक्षिता, जतिन, मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा, एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल। नज़ीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लिंबू, रितेश लिंबू, उषा, ज्योति, किरण, दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार। भुट्टो मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा से अमर वर्मा। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो। आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा, शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर MP से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम, पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाज़ियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी, ज़िला मोहाली, पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाज़ार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम, जावेद, उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड़ शहर से पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुतकर्ता हैं तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: आशा जी।
1: हैं? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नकाल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
1: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, आशा जी आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है?
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबी लाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नकाल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
4: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा, हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें कौन रोके भाई? हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका

0: लीजिए।
1: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
2: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं? मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं आप ही की तरह। ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
3: नक्काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
2: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहां से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
4: बड़े साहब जी हैं
2: क्या? है? ये कैसा सवाल है? मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
4: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
2: अरे
4: कब आएंगे?
2: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
1: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
4: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
1: जी।
4: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
1: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
4: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
3: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
4: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
3: अच्छा,
4: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
3: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बात सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
4: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
2: इसीलिए इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
4: सर आप बुरा न माने तो एक बात को।
3: हाँ हाँ बोलो बोलो।
4: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
3: अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
2: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
3: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
2: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
1: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
2: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ क्या नाम है आपका?
4: जी सत्यमूर्ति।
3: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए, एक बार बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना
4: जी?
3: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
4: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना मैं आपका एहसान मानूंगा।
3: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
4: जी?
3: अरे आपको क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता।
4: जी जी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
3: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई।
2: चौकन्ना, टेलीफोन उठाना। ओ कहाँ मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
1: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
2: ओहो हिसाबी लाल जी।
3: सर आप सीनियर हैं।
2: ओहो ठीक है ठीक है, मैं ही उठाता।
3: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
5: लगता है, साहब जी आ गए।

0: आज बहुत जल्दी आ गए।
1: लगता है साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
0: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
2: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
3: पैसा मत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
1: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
4: नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
2: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
5: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है, स्टुपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो, जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
6: जी सर।
0: सर अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
2: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
0: जी
2: हाँ, कल आना कल।
7: सजन कब आएगा, सजन कब आएगा।
2: चौकन्ना।
4: जी सर।
2: सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
4: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
2: क्या,
4: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
2: हिसाबी लाल जी,
1: जी
2: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
1: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
3: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
1: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
2: कर लो।
1: आशा जी आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
8: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ।
1: ये भी ठीक है।
0: नमस्कार सर,
2: कहिए क्या काम है।
0: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
2: हाँ ठीक है ठीक है।
1: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं।
0: जी हाँ।
4: नक्काल बाबू,
2: हाँ
4: आपको साहब बुला रहे हैं।
2: ठीक है आता हूँ, आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
6: नमस्कार सर।
9: नमस्कार। नक्काल बाबू
6: जी,
9: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
6: कहिए सर।
9: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है।
6: जी।
9: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है।
6: ओ।
9: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
6: ओ, तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
9: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
6: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते है ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा।
9: वही तो मेरी समस्या है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं।
6: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
9: नक्काल बाबू
6: जी,
9: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा,
6: वो
9: इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं
6: जी।
9: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
6: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
9: हाँ ठीक है, सारे डेट्स जरा ठीक तरह से नोट कर।
6: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ।
3: उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
1: अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू।
6: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11 12 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
1: अरे वाह।
0: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
2: भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए, हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
0: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
2: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
1: सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को

0: क्यों परेशान करते हैं?
1: बिल्कुल,
0: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
2: तो फिर मैं कब आऊं?
1: कल आना, कल।
2: कल? कल तो इतवार है।
1: ओहो, तो सोमवार को आइए। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
3: नकाल बाबू।
4: जी सर।
3: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
4: जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
3: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
4: पर सर, लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर, ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
3: खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। The whole program should be closely monitored.
4: जी हाँ, whole program close ही होना चाहिए।
3: ये कैसी बातें करते हैं नकाल बाबू?
4: जी,
3: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है।
4: जी,
3: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
4: साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं, सर्कुलर है।
3: खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए। उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
4: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 कॉफी मंगा लूंगा।
3: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
4: सर, आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगी।
3: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना?
4: जी हाँ साहब, हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर, तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
3: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
4: ओके साहब। सर, मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
3: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम?
4: जी,
3: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
4: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूँ।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा।
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट। क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मूसल।
2: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। आप खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
2: ये लीजिए। चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट। चना लीजिए चना।
0: अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके। ओ चने वाले दादाजी,
3: जी
0: आइए जरा।
2: और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना?
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना?
2: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र

0: क्यों करती है? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
1: क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
0: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
2: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया।
0: नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सत्यमूर्ति चलने वाला हूँ, पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। चला भाई चला, गरमा गरम चला।
1: अब ये चना खाने से हम में प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी, इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
2: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
1: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
2: मैं आशावादी हूँ।
1: हाँ, तुम हो ही आशा।
2: कम से कम तुम जैसी सैनिक कभी तो नहीं हूँ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
4: हिसाब। बिलाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
5: मिर्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
6: नक्काल बाबू,
4: क्या
6: कोई एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
4: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
6: आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल?
0: हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
4: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
4: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
3: सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान है, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
0: हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
4: उससे क्या? सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
0: एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
3: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
4: ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
0: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
4: जी,
0: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
4: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
0: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली हैं। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित होंगे।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुलाकर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबीलाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं। यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और
4: उसके बाद बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए था। चना खाइए, चना।
5: अजी महाशय,
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ। अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई चना चाहिए। अरे गर्मा गर्म चना, मसालेदार चना। चना खाइए साहब, चना।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
6: आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
7: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
5: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
7: ओ, समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
5: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
7: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र?
5: सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
8: सर, मेरी अर्जी
6: आज नहीं होगा, कल आना, कल।
8: साहब जी, मेरा प्रमाण पत्र।
5: आप जाओ भी, कह दिया ना, कल आना, कल।
9: अरे सत्यमूर्ति जी, आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
7: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं, आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
9: क्या,
7: कल आना, कल।
9: अरे सत्यमूर्ति जी, मेरी नौकरी चली जाएगी।
7: हाँ भाई, अब जाओ भी, कह दिया ना, कल आना, कल।

0: कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक

0: अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइंस लाइट्स साउंड कैमरा एक्शन।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
4: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
5: उस
4: जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
5: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और समहाउ एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं। एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
4: बिल्कुल, और वो महफिल ही ऐसी होती है,
5: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इनका मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
4: तो बाबा आजमी ने आपको,
5: उन्होंने तो
4: एक राह दिखाई,
5: हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही है अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
4: वो फ्लैट हो
5: वो
4: गया,
5: जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
4: अरे बाप रे,
5: 2014 की बात है एफटीआई के बाद, और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो,

0: क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आज़मी जैसे मिले हमको, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहाँ जहाँ हो, तुम जिस चीज़ के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
1: वाह,
0: और फिर हम 2 साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में, क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे, तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। व्हेन
1: कैसे निराशा का सामना किया?
0: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज़्यादा,
1: कितना लंबा चला ये?
0: ये चला कुछ एक एक 1.5 साल।
1: किसकी मदद मिली?
0: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी, ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा। पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहाँ पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से, उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था,
1: अपने ख्यालों में गुम थे।
0: अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे कि ये दूध उबल के गिर रहा है और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
1: अरे बाप रे,
0: तो वो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन, हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे, क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं और हम गाते भी अच्छा हैं, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही चीज़ कराते हैं, रोज़ रुलाते हैं, रोज़ किसी से वैम्प है तो बदमाश ही है, वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहाँ पे। अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
1: बहुत बड़े सवाल थे ये सब।
0: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
1: मेरा दिमाग घूम
0: हाँ।
1: गया।
0: और फिर हम, आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है, तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है।

0: होता है तो ढाड़स बंधा रहता है आपके पास, वो भी कमी होगी आई एम श्योर, वो भी कमी थी मेरी लाइफ में, बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था।
1: गजब।
0: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड डायरेक्ट ऑल्सो, और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है, तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
1: कैसे अपने आप को संभाला और इस एक साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
0: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। तो थैंकफुली यू नो, आज आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं, तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है। यू नो, हम तो
1: इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद
0: की
1: भी
0: राय
1: लग सकती
0: मदद
1: है।
0: हमको ये अंदाजा नहीं था।
1: हाँ।
0: हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास यू नो टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर, ये सब समझ ही नहीं था हमको। बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको, तो बस हम, दैट वॉज अ गुड डिसीजन।
1: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप
0: हाँ,
1: की गोद की तरफ लौटती है।
0: हाँ,
1: ये दुनिया की सबसे प्यारी बात है।
0: सबसे प्यारी बात है, और ये मेरा सौभाग्य है मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं, उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है, पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये,
1: बिल्कुल
0: वो भी तो मर्द ही है ना।
1: बिल्कुल।
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा, आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद, बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते, जाओ उड़ो, बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो। यू नो, बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहाँ पे पापा मेरे सब्जियाँ उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है जैसे ये, कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था, हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे, ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
1: और इसलिए आप संभल गए,
0: इसलिए हम संभल गए।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल
1: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई,
1: बिल्कुल पूरी तरह से,
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वाज वेरी डिफिकल्ट, बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया, और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ,

0: मेरे जीवन में. इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो. ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य. तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा. इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहाँ के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट.
1: वाह वाह वाह.
0: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था. तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया. और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहाँ के फोक म्यूजिक को सुने. और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था. और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है. झारखंड है,
1: झारखंड था,
0: यूपी है,
1: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था.
0: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं. अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता. और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं. ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है. मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में. और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है. मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं. पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन. हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में. तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम. और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो या बनी जई हो बनी के जोगिनिया हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है. या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी. जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए.
1: ओहो, ये बहुत बड़ा झटका था.
0: बहुत बड़ा झटका था. सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है. और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है, उर्दू पोएट्री,
1: मनीष गुप्ता का
0: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात.
1: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था.
0: जी
1: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है.
0: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये. और क्योंकि हम जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
1: खूब चलता है. वो
0: खूब चलता है हमको आज भी.
1: ओरिजिनली छाया जी ने गाया है.
0: जी,
1: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही.
0: ओ, कैसा ये सर्कल है.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है. मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है. और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं आपको, हम कहाँ ढूंढ सकते हैं आपके, और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है.
1: और मैंने क्या समझा पता है?
0: हाँ.
1: किसी एक्ट्रेस ने गाया है. मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे. मैंने वो वीडियो बहुत देखा है.
0: अच्छा.
1: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ.
0: अच्छा.
1: कुछ कविताएं पढ़ी हैं.
0: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर. तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए. क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था ना, हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है. बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
1: दो कैमरास
0: लगा के. बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज भोजपुरी में.

0: अगर हम सेम चीज़ रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे, ऐलान किया था।
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है। तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट तो, लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है, और वो खूब चला,
0: खूब चला
1: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
1: वो भी मजेदार है, उसमें तो आपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
1: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ
1: और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये,
0: हाँ, ये
1: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
1: और वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, AR रहमान सुन ले हमको, बस। और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
1: और उन्होंने सुन ली,
0: और उन्होंने सुन ली।
1: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी
0: जन्मदिन है,
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे।
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे AR रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, AR रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि AR रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे। एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
1: सारे सुने होंगे,
0: और यू नो AR रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माय इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है।

0: मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना।
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे।
1: वाह।
0: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में, अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा। ये जो
1: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके? अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी। लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास, प्लीज।
1: वाह वाह।
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं।
1: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम,
0: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम।
1: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
0: तो ये 3 साल पहले की बात है। मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
1: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
0: ओहो कैसे बताएं हम। हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहाँ रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में, एआर रहमान स्टूडियोज।
0: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है, पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका
1: बिल्कुल।
0: और जब हम पहुंचे तो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और ए आर रहमान का एक गाना हो सोलो।
1: एग्जैक्टली ये बोला,
0: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: जेवा पे सरस्वती विराजती हैं भाई, विराजती।
1: क्या बात है, क्या बात है। और ये संभव हुआ।
0: ऐश्वर्य ने बोला भी कि यू नो ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नज़र में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर ए आर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे, आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा ए आर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
1: अरे गजब।
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
1: एग्जैक्ट 6 महीने,
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
0: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
1: दीपाली ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गईं, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि

0: जी
1: ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूमधड़ाम गाने नहीं हैं,
0: जी
1: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थीं, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
0: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज़ अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीज़ों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट हैं हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर, प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में। वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे, तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
1: बहुत बड़ी
0: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था।
0: था कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है। ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये वो ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं। ये जीनियसेस हैं ये लोग। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो,
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये
1: बिल्कुल
0: सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की। इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास,
1: बिल्कुल
0: और
1: वो सुन
0: इंस्टेंट
1: के
0: अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं,
0: आ
1: जो तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम है
0: कंप्लीट एल्बम है। यस,
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना। जिसने
1: अच्छा
0: गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
1: बिल्कुल,
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट,
1: उसको ये मौका दिया गया।
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है, रहमान
1: पर
0: सर इज
1: हमको तो आपकी
0: सो
1: आवाज में सुनना है।

0: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने।
1: नहीं थे जी।
0: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
1: जी।
0: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
1: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं ना बात।

0: करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या बात,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल,
0: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना, सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो। और हम लोग चलना शुरू किए और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली, गुड वर्क।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद हम लोग अंदर गए और वो जहाँ भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है,
1: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
0: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
1: वाह वाह।
0: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम एआर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
1: ओहो।
0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने।
1: क्या बात है, क्या गाया?
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है।

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक ये मेरा स्टाइल है वैसे। किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मे भी इसलिए शायद, वेरी गुड, एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है। और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के, असली रूह इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था। और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास। उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस था, क्या बात है।
1: वो लोग अटकते हैं इसमें,
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को

0: यहाँ तक बोल दो कि जो चीज़ हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
1: क्या बात है,
0: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
1: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्य की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
0: ऐश्वर्य से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे। और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे।
1: अच्छा।
0: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली हैं, बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद
0: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे। मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम होली डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, बहुत। अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं। और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज़्यादा तूल देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं और आप ज़्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहाँ एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत। और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले, पापा मम्मी, पापा माँ, पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम, जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से, ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ गया।
1: यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है,

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई, और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो ख़त्म ना हो, लेकिन कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज़ सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज़ हम ज़रूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं। चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हों, वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीज़ें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है। जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीज़ें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: अभी तक आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके तुरंत बाद अंग्रेजी।

0: तेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि अब इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदलना उनकी साझा जिम्मेदारी है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि बदलती दुनिया को पुराने संस्थानों द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण में सुधार आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों के विकास में ग्लोबल साउथ के देशों की समान भागीदारी होनी चाहिए। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा ताकि हर साल अध्यक्षता बदलने के बावजूद समूह की संस्थागत गति बनी रहे।
2: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन से मुलाकात की। इससे पहले श्री पेजश्कियन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैनिकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहूदी नववर्ष रोश हशाना के अवसर पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के लोगों और दुनिया में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष सभी के लिए शांति, बेहतर स्वास्थ्य और सतत प्रगति लेकर आए। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर को झुकाने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि जिस दिन जीवन से मैं शब्द निकल गया, प्रभु की समीपता का एहसास हमें अपने आप ही हो जाएगा। इसके लिए किसी प्रलोभन या चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत है तो केवल भगवान के प्रेम में विश्वास की।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों में शुरू किए हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां साधारण बीमारियों के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच और निशुल्क इलाज भी होगा।
2: हर केंद्र पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपलब्ध होगा विशेषज्ञों का परामर्श, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए होगा योगा और व्यायाम प्रशिक्षण भी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए ₹1,05,000 तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं। देखो ना,

0: कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब।
1: सिर्फ इसे नहीं, सभी को अनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युवा मंच।

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। युवा साथियों, इन्हीं साहस भरी पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ पवन शर्मा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज होता है हेलो जीनियस प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर, और ये नंबर है 01892224391 01892224391। वैसे तो जन्म लेने वाला हर प्राणी जीनियस होता है, बस अपनी क्षमताओं की पहचान करने वाले ही सुपर जीनियस बन जाते हैं। आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव फोन इन रहेगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ पहेलियों के हल हम आपसे खोजना चाहेंगे। तो चलिए एक नया पैटर्न अपनाते हैं। तो कुछ जीके के सवाल कुछ पहेलियों के साथ हम आपको छोड़ेंगे और जिसका उत्तर आपको देना होगा एक गीत के बाद। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। जी, सबसे पहला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, इसरो का पूरा नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसी के साथ एक पहेली भी आपको बूझ रहे हैं और बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी पहेली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है? जी, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बिल्कुल, प्रश्न हम एक बार फिर से दोहराएंगे। इसरो का पूरा नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? और पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है? तो इन प्रश्नों के उत्तर हम लेंगे। फ़ोन कॉल्स हमें मिलने शुरू हो गई, लेकिन गाना प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे।

01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर 01892224391। इस नंबर को डायल करके आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न था, इसरो का पूरा नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? और पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है? जी, कॉलर्स कॉल तो कर रहे हैं लेकिन दो दो रिंग मारकर वो बंद कर दे रहे हैं। प्रश्न हमने तीसरी बार दोहरा दिए हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे श्रोता, हमारे युवा साथी हमारे संग जुड़ें और इन प्रश्नों के उत्तर दें।

चलिए, फिलहाल हमें कॉल रिसीव नहीं हो रही है, तो पहले प्रश्न का उत्तर है, इसरो का पूरा नाम जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी 1971 को मिला। और पहली थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है, तो हम इसके लिए कहेंगे टॉवल, यानी कि तौलिया। ऐसी चीज़ है जो खुद गीली होती है लेकिन दूसरों को सुखाती है। जी हाँ, हेलो जीनियस प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और 01892224391 है हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। जी, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? जी, ब्रिक्स सम्मेलन जो है हमारे दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है और ये कब शुरू हुआ, और

इस बार इस सम्मेलन का कौन सा सत्र चल रहा है? 01892-224391 ये हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। और साथ ही में अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ओलंपिक के जो चिन्ह होते हैं उसमें कितने छल्ले होते हैं? ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। और श्रोता, हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और हमें कॉल करेंगे इस गीत के बाद।

जी, आज के प्रोग्राम में हमें कॉल्स मिल रही हैं लेकिन वो रिसीव नहीं हो पा रही हैं। तो श्रोताओ, हमने प्रश्न पूछा था ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, और ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। जब ये शुरू हुआ था 16 जून 2009 को, तो रूस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। तब ब्रिक्स में BRIC तक ही 4 देश इसमें शामिल थे। बाद में एस में साउथ अफ्रीका जुड़ा। और भारत में जो ये भारत मंडपम में इसका सम्मेलन हो रहा है, 2026 का यह 18वां सम्मेलन है, और ये 12 यानी आज और 13 सितंबर को इसका आयोजन होगा। और इस बार की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिस्टेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। पहले तो जब पहला सम्मेलन हुआ उस समय भारत में केवल ब्रिक्स में केवल 4 ही देश इसमें जुड़े हुए थे, लेकिन अब इसके 11 सदस्य हो गए हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन होता क्यों है? जी बिल्कुल, ये जो विकासशील देश हैं वो एक दूसरे की समस्याओं पर चर्चा करते हैं, व्यापार निवेश की बातचीत होती है इसमें,

0: जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की बात होती है, आपसी सहयोग से इन चीज़ों को कैसे हल किया जाएगा समस्याओं का। क्योंकि देखिए, हर समस्या जो है, हम जैसे घर में कुछ समस्या हो जाती है तो उसका समाधान करते हैं परिवार के सदस्य मिलकर, और इसी तरह अगर हम पंचायत स्तर पर देखा जाए तो पंचायत स्तर पर पंचायत के सदस्य करते हैं, इसी तरह ज़िला की बात होगी, राज्य की बात होगी, देश की बात होगी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस तरह के सम्मेलन जैसे ब्रिक्स सम्मेलन, ये भारत मंडपम में हो रहा है, तो इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं जिसमें वैश्विक स्तर के मुद्दों पर बातचीत होती है। तो युवा साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपसे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रखे थे, लेकिन ब्रिक्स पर चर्चा ज़्यादा ही हो गई है। और 01892224391 ही हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और अगला प्रश्न हमने पूछा था, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी, ये थे नील आर्मस्ट्रांग। और ओलंपिक के चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? आपका जीके ही हम अब बढ़ा रहे हैं, तो उसमें 5 छल्ले होते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल इंतज़ार करेंगे अपने श्रोताओं का, अपने युवाओं का, कार्यक्रम से वो जुड़ें। और फ़ोन लाइन बिल्कुल खुली है, 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर।
1: अरे मुन्ना, ज़रा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
2: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
1: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
3: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
4: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: हेलो जीनियस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज के जीनियस हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं, अगला प्रश्न हम पूछेंगे और गाना भी आपको सुनवाएंगे, और हमें उम्मीद रहेगी कि आप हमें कॉल करेंगे, और कॉल करने की कोशिश पूरी आपकी रहेगी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, और भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहेली है, बहुत सिंपल सी पहेली है, बहुत आसान सी पहेली है। युवा साथियों, आप कॉल कीजिए हमें। बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आँखों के रोता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ? और ये 3 प्रश्नों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। इस गाने के तुरंत बाद हम आपसे इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे, लेकिन गाना आपको पहले हम सुनवाएंगे।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी। नाम बताएं अपना।
0: मैं लक्की बात कर रहा हूँ।
1: जी लक्की जी, बताएं कि प्रश्न आपने सुने हमारे आज के।
0: जो पहेली है उसका नाम मतलब जो बादल है।
1: जी बहुत अच्छी बात, तो इसके लिए हम क्लैपिंग करेंगे। आपने पहेली का उत्तर तो बिल्कुल सही दिया। अब ये भी बताइए कि हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। बहुत बढ़िया। और सबसे छोटा ज़िला। दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाइए जी। सबसे छोटा ज़िला है हमीरपुर। और आपको पता है इसका क्षेत्रफल कितना है, लाहौल स्पीति का जो सबसे बड़ा ज़िला है।
0: ये नहीं बताया आपने।
1: जी अब थोड़ा सा हम आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसका पूरा क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। और जो लाहौल स्पीति है वो सबसे बड़ा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा ज़िला है हमीरपुर और इसका क्षेत्रफल है 1,118 वर्ग किलोमीटर। तो मुझे लगता है आपने अपने ज्ञान में कुछ इजाफा किया होगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जी। आज के जीनियस आप ही बने हैं और हम उम्मीद करेंगे बाकी जीनियस भी हमें कॉल करें। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: दीदी जी, राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बोल रही हैं? शिवांश
1: वंश
0: वंश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: ज्वाली
0: जी वंश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
1: थर्ड।
0: थर्ड क्लास में। और आप जीके के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे?
1: हाँ जी।
0: जी। तो पहला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? और तीसरा,
1: स्वर्ग कंप्यूटर।
0: नहीं बिल्कुल गलत है। और तीसरा प्रश्न भी हम पूछ रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब और किस महान व्यक्तित्व की जयंती यानी जन्म दिवस पर मनाया जाता है? और इसी के साथ हम पहेली पूछ रहे हैं, शायद आपको पता होगा, मेरे दांत बहुत हैं परंतु मैं खाना नहीं खा सकता, बताओ मैं कौन हूँ? मेरे दांत बहुत हैं परंतु मैं खाना नहीं खा सकता, बताओ मैं कौन हूँ?
1: क्या वो कंगी?
0: बहुत बढ़िया। और अभी हमारे 3 प्रश्न बचे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे, चलिए आपने प्रोग्राम में हमें कॉल किया, कंघी का जवाब आपने बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन 3 प्रश्न हमारे अभी भी हमारे हमारे युवा साथियों के लिए बचे। हमारे एक नन्हे साथी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी श्रोताओं, आप भी युवा साथियों इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं क्योंकि युवाओं का ये कार्यक्रम है। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब और किस महान व्यक्तित्व की जयंती यानी जन्म दिवस पर मनाया जाता है? हमारे 3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढेंगे बिल्कुल इस गीत के बाद।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम काशवी है। हाँ
0: काशवी
1: जी,
0: जी, काशवी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप?
1: 10वीं।
0: जी, तो आपको पता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
1: हाँ जी, मुंडक उपनिषद।
0: बहुत बढ़िया। और भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था?
1: परम कंप्यूटर।
0: जी, परम 8000। ये था हमारा सबसे पहला स्वदेशी, हमारे देश में बना हुआ सुपर कंप्यूटर। और भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब और किस महान व्यक्तित्व की जयंती यानी जन्मदिवस पर मनाया जाता है?
1: 12 जनवरी को।
0: जी, और किस व्यक्ति के

0: दिवस पर ये मनाया जाता है जी,
1: वो नहीं पता।
0: वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर, और बहुत अच्छी बात है। और आज आप फिर आपने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो सबसे सुपर जीनियस तो आप हो गए, है ना, आज के प्रोग्राम के। जी चलिए, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही सुनते रहें हमारा प्रोग्राम ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े, जीके भी बढ़े, है ना।
1: जी थैंक
0: जी,
1: यू।
0: थैंक यू। जी युवा साथियों, हमारे पास बहुत ही कम समय अब बचा है, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 01892224391 ये है हमारे स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। और अगला प्रश्न है हमारा, छोटी काशी के नाम से हिमाचल के किस शहर को जाना जाता है? उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? और WHO का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसी के साथ एक छोटी सी पहेली, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को कटोरा लेकर खड़ा रहना पड़ता है? ये है हमारे आखिरी प्रश्न, और श्रोताओं से हम गुजारिश करेंगे जल्दी से हमें कॉल करें और प्रश्नों के उत्तर हमें अति शीघ्र दें। हेलो जी, ये कॉल कर कर गायब हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे हमें दोबारा कॉल करें। 01892224391 ये हमारे स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: लेरिया।
0: जी आपको पता है कि छोटी काशी किस नाम से हिमाचल में किस शहर को जाना जाता है?
1: मंडीगो।
0: बहुत बढ़िया। उगते सूरज का देश किसे कहते हैं?
1: हाँ जी,
0: उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? हाँ जी, देश की बात हो रही है।
1: जापान।
0: बहुत बढ़िया। WHO का पूरा नाम कहाँ है, क्या है, और इसका मुख्यालय कहाँ है?
1: किसका?
0: WHO इसका फुल फॉर्म क्या है?
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
0: जी, पीछे जो आपकी मदद कर रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है, और इसका जो मुख्यालय है जिस वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। आपका डॉग वो है बहुत परेशान कर रहा है। प्रोग्राम में आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद
1: हाँ जी,
0: जी। आज के जीनियस आप भी बने, और इसके लिए आपको क्लैपिंग है जी। श्रोताओ, हेलो जीनियस प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और हमने उम्मीद की थी बहुत सारे युवा साथी हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, लेकिन नन्हे मुन्ने साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं।

0: कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।
1: बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
2: जी श्रोताओं, कॉल्स हमारी बहुत कम लगी, लेकिन जो भी लगी सभी जीनियस हैं, और हर कोई जीनियस होता है, हर कोई अद्भुत होता है। बस अपनी क्षमता, अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत हम लोगों को होती है। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा सुनील शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल, और अब मुझे यानी पवन शर्मा को दे इजाज़त।

सांझ 6:30 पर मौजा गराई दिया कार्यक्रम पेश किया जाएगा। शाम 7 के समाचारों में पहले हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात 8 सुनिएगा 18वें ब्रिक्स सम्मेलन एवं प्रमुख घटनाओं पर विस्तारित विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन पाएंगे। 8:35 पर देशभक्ति गीत प्रसारित किए जाएंगे। समाचार संध्या 8:45 पर रात्रि 9 न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएंगी। रात 9:15 पर आकाशवाणी शिमला से हिमदर्शन कार्यक्रम रिले किया जाएगा। 9:30 पर संस्कृति भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओ, सभा के अंत में रात 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे। ये तो थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए जानते हैं कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। कल दोपहर 12:30 पर बाल सभा कार्यक्रम पेश किया जाएगा। कल शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच। ये तो थी आज के कार्यक्रमों संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 6 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और रिले के लिए आपको करना होगा कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: वाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण के लिए भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हिमालय संरक्षण के साथ ही राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिलेगी। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं बल्कि मानव जीवन, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपूर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में बताया कि सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और इससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और इसे नशे के गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। शिमला में कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने 15 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने शिमला में एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में कहा कि रोबोटिक सर्जरी की आड़ में सरकार इस ऐतिहासिक अस्पताल को नष्ट करने पर तुली हुई है। समिति के सचिव फालमा चौहान ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए प्रदेश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला है।
2: जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा सिग्नेचर जो अभी तक हम लोगों ने करवाए हैं और 15 सितंबर को हम ये जो सिग्नेचर है ये हम प्रदेश की सरकार को जो है सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो मेमोरेंडम होगा उस दिन हम लोग सरकार को मिलेंगे। लोगों से, शिमला की जनता से ये अपील करते हैं कि 15 सितंबर को आप इस कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए भारी मात्रा में इस मुहिम में जुड़े।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली क्षेत्र को खेलों के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरोली में आज एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इंडोर स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली महाविद्यालय के दूसरे भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। कांगड़ा जिले में शाहपुर जोन की अंडर 19 खेल प्रतियोगिता आज राजकीय विद्यालय दुर्गेला में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में शाहपुर क्षेत्र के 22 स्कूलों के 350 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना और आपसी भाईचारे की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। भाजपा ने कुल्लू में ब्यास नदी में ड्रेजिंग के नाम पर हो रहे कार्य के निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि खनन संबंधी कार्य खनन विभाग के बजाय वन विभाग के माध्यम से करवाया गया जिससे सरकार को मिलने वाले राजस्व और रॉयल्टी का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में बेस वैल्यू प्राइस सरकार के पास जमा नहीं करवाया गया और न ही आवश्यक बैंक गारंटी जमा की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: मीडिया वे 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में गीत संगीत के साथ हम हाजिर हैं और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। मोहम्मद रफी और सुमन कल्यालपुर के युगल स्वरों में लीजिए सुनिए फर्ज फिल्म का ये गाना, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

प्रिंस फिल्म का गाना श्रोता अभी सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज थी, शंकर जयकिशन का संगीत। शैलेंद्र सिंह और अशोक भोंसले का गाया दो गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। रफू चक्र फिल्म से ये गीत हमने लिया है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा कराए दिया।

मौजंग रहिंदिया। इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से राम राम। शाम का समय है और इस समय हर कोई व्यस्त होता है, चाहे घर की महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े बुजुर्ग हों। बच्चे व्यस्त होते हैं अपने स्कूल का काम करने में और महिलाएं खाना बनाने में व्यस्त होती हैं, अपने परिवार वालों की देख रेख वो कर रही होती हैं और पूजा पाठ का भी यही समय होता है। आजकल वैसे भी काला महीना चल रहा है तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें जोत जो है वो दिखाते हैं, ताकि ऐसा माना जाता है कि इस अंधियारे में जो ये काला महीना होता है, नाम से ही आपको पता होगा कि लोकल भाषा में भी इसको बड़ी मान्यता दी जाती है, जो लड़कियां होती हैं अपने मायके जाती हैं इस महीने में, जो बिल्कुल नवविवाहित लड़कियां होती हैं अपने मायके में ये महीना बिताती हैं, और पूर्वजों के सम्मान में हम रात को दीपक जलाते हैं ताकि उनके मार्ग में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आ रही हो तो उनका मार्ग प्रशस्त हो। तो ये परंपराएं तो हर जगह की अलग अलग हैं। बातचीत हम करेंगे, हम मौजंग रहिंदिया में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आज का जो खास विषय है वो है कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि शाम का समय है तो थोड़ा सा भक्तिमय माहौल हम बनाते हैं, तो चलिए सुनते हैं ये शिव भजन।

जी, आजकल बूंदें जो हैं बरस रही हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और मौसम विभाग ने भी हमें बताया है कि 17 तक काफ़ी भारी बरसात होने की संभावना है। और वैसे तो मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, बारिश में जो है पहले के मुकाबले थोड़ी कमी आई है। अगर सुबह बारिश होती है तो शाम के समय बारिश नहीं होती है, या फिर सुबह अगर धूप निकलती है, खिलती है, या दिन को थोड़ा मौसम ठीक रहता है तो शाम के समय जो है बादल उमड़ घुमड़ कर बरस जाते हैं। मौज अगर इंडिया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। और आधुनिक तकनीकें कैसे शुरू हुई, जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास होता गया वैसे वैसे तकनीकें विकसित होती गईं। कृषि, खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्य और अन्य सामान के उत्पादन से संबंधित चीज़ों के लिए कृषि का विकास हुआ। सभ्यताओं के विकास भी जो है इसी के साथ होते गए, और इसमें पालतू जानवरों का पालन किया गया, पौधे यानी फसलों को उगाया गया, जिसमें अतिरिक्त जो है खाद्य का उत्पादन हुआ, और इतनी घनी आबादी और स्तरीकृत समाज के विकास को इसमें सक्षम बनाया गया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञान के रूप में किया जाता है, और इसी से संबंधित विषय बागवानी का अध्ययन बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में इसमें किया जाता है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, खेती करने के उपकरणों और तरीकों में भी परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में जब खेती करने के औजारों के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं था, तब लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से मिट्टी खोदने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया, जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया, या फिर लकड़ी के औजार बनाए गए, और उसके बाद हल का आविष्कार हुआ, और जिससे उसके मुख्य सिरे पर लकड़ी के साथ उसको पैना असीरा जो है बनाकर जानवरों के साथ बांधकर लकड़ी के हल के साथ जोतकर खेतों में हल चलाया जाता था और मिट्टी को ढीला किया जाता था। और आज भी बहुत जगह पर इस तरह से बैलों से खेती होती है, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आ रहा है तो ये जो बैलों की खेती करने की तकनीक है उसको अब ट्रैक्टरों ने ले लिया है। हाथ से चलने वाले ट्रैक्टर भी इसकी जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र में खेती जो है वो ट्रैक्टरों के माध्यम से करना भी आसान नहीं है। सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, तो हल चलाना तो संभव होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अब अपना समय बचाने के लिए पशु ना पालें तो उसके लिए उन्होंने पशु जो है वो पालना छोड़ दिया है। खेती करते हैं तो उस खेती के लिए ट्रैक्टरों का, छोटे ट्रैक्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपके संग जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकें क्या हैं इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन एक गीत सबसे पहले आपको सुनवाते हैं।

मौजा ग्रैंदिया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और किसान साथियों, हम बात कर रहे थे कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की और ट्रैक्टर की और हल की बात हम कर रहे थे। सबसे पहले हल की खोज हुई और उसके बाद ट्रैक्टर जो है उसकी जगह उसने स्थान ले लिया। ट्रैक्टर के माध्यम से खेत जोते जाते हैं, एक समय की बचत तो होती है, लेकिन जो गाय के बछड़े होते हैं उनका उपयोग जो है वो कम हो गया है, जिनसे हल जोते जाते थे। इसकी वजह से सड़कों पर जो है आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। विज्ञान के क्या कहें हम, फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके नुकसान भी हमें झेलने पड़ते हैं, उनके साथ हमें दो चार होना पड़ता है। और जिस तरह से तकनीक विकसित हो रही है तो उसका दूसरा नुकसान ये भी है कि बेरोज़गारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो किसान साथी जो है दो चार किसान मिलकर अपने खेतों को बैलों के साथ जोता करते थे, उनको काम मिलता था, खेती बाड़ी होती थी, वो अब ट्रैक्टर के माध्यम से हो रही है। तो पेट्रोल या डीजल से वो ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, खर्चा भी दुगना होता है। और लेकिन अगर आपके पास उतने उन्नत खेत नहीं हैं, बहुत खेती बाड़ी नहीं है, तो जितनी खेती में फसल उगती है कई बार मौसम की मार पड़ती है तो वो खेती जो है इतनी पैदावार नहीं दे पाती है। तो जितना आपने उसमें, मान लो कि आपके 5-7 खेत हैं और आपने 3-4 हज़ार रुपये जो है ट्रैक्टर जोतने वाले को दिया है, बीज भी आपने खरीदा है, 3-4 हज़ार उसमें लगाए हैं, तो आपने उसकी कुल मिलाकर 6-7 हज़ार रुपये उस पर खर्च होने के बावजूद अगर आपको 7-8 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपये का जो फसल उत्पादन ना मिले तो वो नुकसान में ही गिना जाता है। तो इस तरह मतलब कहा जा सकता है कि हर चीज़ का फ़ायदा भी उतना है और नुकसान भी है। और हल जोतने के बाद उत्तम बीजों का प्रयोग हम करते हैं ताकि फसल जो है वो अच्छी हो सके। पुराने ज़माने में तो लोग फसल बीज, जैसे फसल पक जाती थी तो बीजों का भंडारण अपने आप करते थे, तो उसमें कई तरह की दवाइयां जो उस समय लोगों ने बनाई होती थी, नीम के पत्ते रखे जाते थे या कुछ और इस तरह से जड़ी बूटियां हैं वो रखी जाती थी ताकि बीजों में कीड़ा ना लगे। तो वो उन्होंने खाद्यान्न जो है अपने जहाँ स्टोर किए होते थे उस समय वहाँ पर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता जाता था, जैसे उन्हें पेड़ू कहा जाता है जिसमें अनाज रखा जाता है। तो इसी तरह बीज भी सुरक्षित रखे जाते थे। और बीजों का चयन किस तरह से होता था, जब हम बीजों को फसलों को बैलों के द्वारा उसकी थ्रेशिंग होती थी पहले तो उस आजकल तो तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि ट्रैक्टर के माध्यम से ही एक तरफ फसल कटती है, दूसरी तरफ बीज निकलता है, तीसरी तरफ उसमें जो तूड़ी है भूसा है उसे बोरियों में भरकर अलग किया जाता है, इसी तरह धान की भी की जाती है थ्रेसिंग वगैरह सारा। लेकिन पहले के समय में सारा काम जो है बैलों से होता था, तो बीज भी वो उस तरह से सुरक्षित रखे जाते थे। जब फटकारण विधि या कुछ इस तरह से छज्जों से उसे छान कर निकाला जाता था तो जो अच्छे अच्छे बीज होते थे, मोटे मोटे बीज होते थे, लगता था कि इस खेत के बीज बहुत अच्छे हैं, तो वो अगले साल के लिए सुरक्षित वो अपने अगले साल की फसलों के लिए रख लेते थे। उन्हें उनका भंडारण बहुत अच्छे से किया जाता था, उन्हें धूप में सुखाया जाता था ताकि उसमें कोई कीड़ा ना लगे और कीट पतंगों से वो नुकसान ना हो। आजकल के समय में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पैदावार कम है या खेती बाड़ी थोड़ी कम है तो हम जितना अनाज निकलता है उसके खा पी कर हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बीज का भंडारण करना जो है हम ज़रूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ पर बीज हमें उत्तम किस्म के मिल जाएंगे, लेकिन हमें अपनी पुरानी परंपराएं बिल्कुल भी किसान साथियों नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उससे एक तो हमारे पास जो किस्म हमने लगाई है, अगर कई बार ऐसा होता है कि जो चावल हमने बहुत अच्छे से हम खाते हैं कि बनता है जैसे पतीले में, तो वो दूर तक खुशबू उसकी पूरे गाँव में आसपास फैलती, लोग आते हैं कि कौन सी किस्म का चावल लगाया, कौन सा बासमती लगाया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब लुप्त हो रही हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्सिंग के साथ आ गई हैं, आधुनिक तकनीकों के साथ वो मिक्स होकर आ रही हैं। पैदावार बेशक बढ़ रही है, लेकिन जो स्वाद है, प्राचीन टाइम के जो स्वाद थे, पुराने समय के जो स्वाद थे, वो स्वाद कहीं लुप्त हो रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को हमने छुपने नहीं देना है।
और तकनीक तो हमने अपनानी है, लेकिन कोशिश हमने ये करनी है कि हम जो हमारे पास चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं में से हम इस्तेमाल करें। जैसे अब बीजों को लगाने का समय हो रहा है, बरसात ख़त्म होगी तो अब हम सर्दियों की फसलें लगाएंगे, उसमें हम लहसुन लगाएंगे, प्याज वगैरह लगाएंगे और बहुत सारी जो सर्दियों में लगने वाली चीज़ें होती हैं, साग है, पालक है। तो जो किसान है अभी भी हमारे गांव में और हमारे आसपास, हम लोग भी क्या करते हैं, जो अच्छा लहसुन होता है, जो उसकी गुठलियां होती हैं, उन्हें अलग से रख लेते हैं। जो छोटा छोटा होता है उसे हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो बड़ी गुठली होती है इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो अगली बार जो है पैदावार उससे अच्छी होती है। बाज़ार जब हम उन्हीं बीजों को ख़रीदने के लिए जाते हैं तो जब बीज लगाने का समय होता है तो दुगना और तिगुना रेट जो है हमें उन दुकानदारों को देना पड़ता है। तो इस तरह का नुकसान हमने नहीं झेलना है। और अच्छी बात है कि हम अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे अब क्यों मटर लगाने का समय होगा तो पुराने टाइम के जो बीज होंगे मटरों के, वो भी सुरक्षित करके रखे होंगे, संजो कर रखे होंगे, तो उन्हें लगाएंगे, उसमें पैदावार भी अच्छी होती है। और जो उन्नत किस्म की चीज़ें हैं वो भी बाज़ार में आ रही हैं, कम जो रेट्स हैं उसमें हमें मिल जाती हैं। लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ नई चीज़ें दोनों मिलकर हम लगाएं, फिर इसमें ये हमें ये देखना है कि इसमें हमारा फ़ायदा किस में है, कि पुरानी चीज़ों में जो बीज लगाए गए उसमें हमारी पैदावार अधिक हो रही है या नए बीजों को लगाने से हमारी पैदावार अधिक हो रही है। क्योंकि जो नए बीज हैं वो जो दवाइयों से उपचारित होते हैं, तो अब केमिकल जो है बीजों में स्टार्टिंग में ही शुरू में ही लगा दिया जाता है, और वो जब हम खेतों में लगाते हैं उसके बाद भी, फसलें लगने के बाद, उगने के बाद भी, वो हमारे खाने तक, जब तक हमारी वो प्लेट में परोसा जाता है उस समय तक उसमें वो सब चीज़ें रहती हैं। उसके बाद भी हम कीट पतंगों से बचाने के लिए उसमें स्प्रे करते हैं ताकि हमारी फसल, हमारी पैदावार अधिक हो, तो इस तरह के छिड़काव हम करते हैं। तो हर तरह की दवाइयाँ, केमिकल हम अपने आप ही इन चीज़ों को हम खा रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है, परहेज़ करना है, ताकि हम जो है जो हमारी गोबर खाद होती है उसी से हम अपने फसलों को पोषण दें, और जो बाज़ार की केमिकल वाली खादें हैं उनका इस्तेमाल हम ना करें। फसलों की पैदावार बेशक उससे बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं वो हम इस्तेमाल करें। चलिए, बातें बहुत हो गई हैं और एक गीत और आपको सुनवाते हैं।

किसान साथियों, आज विश्व में सबसे गंभीर समस्या खाद्य आपूर्ति की है। पिछले कई वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर से खाद्यान्न की मांग जो है वो दुगनी बढ़ गई है, और इस बड़ी हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमें अच्छी उत्पादन तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी खाद्यान्न आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमारी धरती या फिर हमारे खेत खलिहान तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो कम क्षेत्र में अधिक पैदावार कैसे हो सकती है, इसके लिए हमें आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना होगा। तो अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक, अच्छी खाद, अच्छे उपकरण, उत्तम सिंचाई की व्यवस्था तो हर कोई करता ही है। इसके अलावा भी किसानों के सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जैसे मौसम में

0: तरीके से प्रयोग करने में ये सहायक होती हैं। इसमें खर्च कम होता है और दक्षता बढ़ती है। मौसम की बात की जाए तो अब किसान मौसम संबंधी वास्तविक डाटा जो है प्राप्त कर सकता है, जिसमें उन्हें बुआई का समय, सिंचाई के तरीके, फसल की किस्म तय करने में मदद मिलती है। ये जानकारी मौसम संबंधी ऐप्स या वेबसाइट्स के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। स्वचालित उपकरणों से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई है। स्वचालित उपकरण यानी मशीनें, ट्रैक्टर आदि की बात हम कर सकते हैं, जैसे गायों का दूध निकालना, फल और सब्जियां तोड़ना, यहां तक कि घास चारा, ये सब भी रोबोट कर रहे हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उदाहरण के लिए हम बात करें, मशीनीकरण के उपयोग से शारीरिक श्रम की आवश्यकता कम हुई है, जिसमें दक्षता और उत्पादन में वृद्धि होती है। सिंचाई प्रणालियों की शुरुआत से भी उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली है। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों ने कृषि में कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी अधिक उपज प्रतिरोधी क्षमता जो है उसमें बढ़ाई है, और इससे अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में विकसित करना जो है वो संभव हो पाया है। तो श्रोतो, ये सब चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिंचाई की हम बात करें तो आजकल सिंचाई में भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और स्प्रिंकलर सिस्टम है, और वाटर हार्वेस्टिंग की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कैच द रेन, वो एक नारा देते हैं कि पानी को आज सुरक्षित किया जाएगा तो कल जब गर्मियों के दिन होंगे या फिर जहाँ पे सूखा पड़ता है तो वहाँ पर उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अपने घरों की छतों पर इस तरह से पाइपलाइंस लगा सकते हैं कि पानी जो है बरसातों का इकट्ठा होकर एक गड्ढा बनाए, उस गड्ढे में सुरक्षित किया जा सकता है, जिससे हम ज़मीन का पानी जो है उसके स्तर को बढ़ाकर पानी की नमी को बनाए रख सकते हैं। और जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो हैंडपम्प और इसके ज़रिए जो है हम उस पानी को अपने खेतों में पहुँचा सकते हैं। और जिन क्षेत्रों में पानी बहुत कम होता है तो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है तो वो हर, ये खासकर हॉर्टिकल्चर के लिए तो बहुत ही अच्छी तकनीक है, क्योंकि जैसे पेड़ पौधे हैं वहीं पर पाइप में छेद किया जाता है और उस छेद के जरिए वहीं पर पानी की बूंद बूंद करके वहाँ गिरती है और उस पौधे को पानी जो है, नमी जो है पूरी तरह से बनी रहती है। उसके लिए अलग से फव्वारे या उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फव्वारे से जो है पानी जो है काफ़ी क्षेत्र में वो फैलता है, जो पौधे की जड़ें हैं वहाँ तक पानी ठीक ढंग से वो नहीं पहुंच पाता। तो जो हमारा इरिगेशन सिस्टम के, जो सिंचाई के जो ये चीज़ें हैं, ये सब आधुनिक तकनीकों में ही हमारे आते हैं, और इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करके हम अच्छे से अच्छी फसल ले सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी जानकारियां साझा की, और एक संदेश सुनेंगे और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे।
1: बच्चों, हमेशा रखो याद, चॉकलेट, मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है। खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजें करांदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य

0: देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुँचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. In the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: BRICS leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd April last year in the strongest terms. They reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: क्या हम seafarers emergency support network बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की maritime authority और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
2: Prime Minister Modi said the time has come to translate the unity and consensus among BRICS countries into concrete outcomes on the global stage. Mr. Modi said resilience, innovation, cooperation and sustainability have been India's foremost priorities as chair. Guided by these priorities, India has laid special emphasis on connecting BRICS cooperation directly with the common people. The Prime Minister noted that the Global South stands in the front row of global crisis, but in the back row of decision-making. On the issue of reform in the United Nations Security Council, UNSC, the Prime Minister emphasized that it can no longer be postponed. Prime Minister Modi today held a series of bilateral meetings on the sidelines of the BRICS summit. Prime Minister Modi held bilateral talks with Chinese President Xi Jinping. He also met his Ethiopian counterpart, Dr. Abiy Ahmed Ali, Malaysian counterpart, Anwar Ibrahim, and Vietnamese counterpart, Lee Minh Hung. The leaders reviewed cooperation in trade, defense and security, people-to-people ties, and also covered regional and global issues. Mr. Modi also held talks with Abu Dhabi Crown Prince, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. India has set the Guinness World Record with world's longest steel slag road at Raigarh in Chhattisgarh. The 1.85-kilometer road marks a major scale-up of an indigenous technology that converts processed steel slag, a byproduct of steel production, into aggregates for road construction. And the Central Bureau of Investigation today successfully secured the extradition of Red Notice subject Amritpal Singh, alias Gurpal Singh, from Moldova to India. The wanted fugitive was extradited by the CBI in coordination with the Ministry of External Affairs, the Ministry of Home Affairs and Punjab Police. And in US Open tennis, defending champion Arina Sabalenka will take on second seed Elena Rybakina in the title clash in New York tonight. And that's the end of this news bulletin.
3: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से किसानवाणी कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
4: किसानवाणी

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं राजेंद्र सिंह
7: और मैं दिनेश ठाकुर।
6: दिनेश जी, क्या हालचाल है?
7: बिल्कुल बढ़िया राजेंद्र, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कृषि और बागवानी के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे होंगे।
6: जी
7: राजेंद्र जी, आज के किसान वाणी कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को शाम 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा। काम की बातों में हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे मधुमक्खियों के रोग और उनके उपचार के बारे में, साथ में पहाड़ी लोक गीतों से करवाएंगे मनोरंजन और एक जानकारीपूर्ण बातचीत सुनाएंगे जिसका विषय रहेगा भारत में आलू की वर्तमान स्थिति और भविष्यों के रुझान।
6: जी दिनेश जी, बात करते हैं कार्यक्रम की, तो काम की बातों में हम आज बात कर रहे हैं मधुमक्खियों के रोग और उपचारों के बारे में। तो देखिए, मधुमक्खियों में अनेक प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें एकाराइन, सैक ब्रूड, नोसीमा, यूरोपियन फाउल ब्रूड, अमेरिकन फाउल ब्रूड, चाक ब्रूड प्रमुख बीमारियां हैं। अगर बात करें एकाराइन रोग की तो दिनेश जी, मधुमक्खियों का ये बड़ा भयंकर रोग है। इस रोग में मधुमक्खियों को काफी हानि उठानी पड़ती है। ये रोग मकड़ी जाति की 8 टांगों वाले जीव से होता है। ये जीव बहुत छोटे आकार के होते हैं, मधुमक्खी के श्वास नलियों में पलते हैं और उनका रस चूसकर बढ़ते हैं। रोग बढ़ने से श्वास नलिकाएं बंद हो जाती हैं, जिसके कारण मधुमक्खियां कमजोर होकर मरना शुरू कर देती है।
7: जी बिल्कुल राजेंद्र, और ये रोग अधिकतर नई पैदा हुई मधुमक्खियों को लगता है। ये रोग क्षेत्र की ऊंचाई के अनुसार अप्रैल मई के महीने में शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक तेजी से बढ़ता है। ठंड बढ़ने पर जब नई मधुमक्खियां पैदा होना कम या बंद हो जाती है तो इस रोग का प्रकोप भी कम हो जाता है। इस रोग का हमें तब पता चलता है जब मधुमक्खियां अपने काम करने में सुस्त हो जाती है और उड़ना चाहती है परंतु उड़ नहीं पाती। दिन के समय ये मधुमक्खियां रेंगती हुई दिखाई देती है और घास के तिनकों पर बैठी होती है। रोगी मधुमक्खियां दस्त का शिकार हो जाती है और बक्से के द्वार के आसपास पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। रोगी मक्खियों के पंख उखड़ जाते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के जैसे दिखाई देते हैं।
6: जी अगर बात करें इसकी रोकथाम की तो बीमारी का पता लगते ही रोगग्रस्त बक्सों को 1.5 किलोमीटर रोग रहित बक्सों से अलग कर देना चाहिए। बीमार मधुमक्खियों को गड्ढों में दबा दें। जिन वंशों को बचाने की कोई आशा ना हो उन्हें कीटनाशक दवाई से नष्ट करके गड्ढे में आप दबा सकते हैं। इस रोग का उपचार मिथाइल सिलिकेट से किया जा सकता है। इस दवाई की 5 ml की मात्रा को छोटी सी शीशी में डाल दिया जाता है, ढक्कन में छोटा सा छेद कर दिया जाता है। ऐसा करने से दवाई की गंध बाहर आकर बक्से के अंदर रहती है और मक्खियों को रोग मुक्त करने में सहायता देती है।
7: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, और बात करें थाईसैक ब्रूड रोग के बारे में, ये बीमारी लार्वे फार्म में ही लगती है। बीमारी से कीट मर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मृत कीट सूखकर छिलके जैसा बन जाता है। ब्रूड के बंद सेल में छेद पड़ जाते हैं और बीमारी के कारण मौन वंश बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। जब बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगता है तो मक्खियां अपना घर भी छोड़ जाती है।
6: अगर बात करें इसकी रोकथाम की तो इस रोग का उपचार दवाइयों द्वारा संभव नहीं है, फिर भी बीमारी की रोकथाम के लिए बीमार मौन वंश परिवार को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। विषाणु युक्त

0: मौन गृहों को आग लगा देनी चाहिए। इसके बाद मधुमक्खी बॉक्सों के हर भाग को पोटाशियम परमैंगनेट के घोल में आधा घंटा तक डुबाने के बाद धूप में सुखाकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।
1: बात करें नौसेमा बीमारी के बारे में, तो किसान भाइयों, इस बीमारी का कारण भी एक अति सूक्ष्म जीवाणु होता है जिसको नौसीमा एपिस कहते हैं। भोजन के साथ कीटाणु का प्रवेश मधुमक्खियों के भीतर हो जाता है और इनके डाइजेशन को प्रभावित करता है। इस रोग से प्रभावित मधुमक्खियां मौन गृह के बाहर पंखों के सहारे कांपती दिखाई देती है। कुछ मधुमक्खियां मृतक दशा में उल्टी पड़ी मिलती है और इसमें मौनों के उदर फूल जाते हैं। रोगी मौन के मल उनके द्वारा संग्रहित अमृत व पराग और मौन पालक के हाथों से ये प्रयुक्त यंत्रों से भी इस बीमारी को फैलने में सहायता मिलती है। किसी अवस्था की भी मक्खियां इसका शिकार हो सकती है और इसका प्रकोप बसंत या शरद के आरंभ में अधिक होता है।
0: इस रोग की रोकथाम के लिए एक तो हम थायमल प्रयोग में ला सकते हैं। ये रंगहीन ठोस दवा है। इसे हम चीनी के शरबत में मिलाकर मौनों को खिला सकते हैं। 1 किलो चीनी में 60 मिलीग्राम दवा मिलाकर इसे 7 से 8 दिन तक लगातार खिलाना पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए एक अन्य दवा जिसे फन मैगलीन कहते हैं का इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: तो राजेंद्र जी, ये तो रही कुछ एक जानकारी मधुमक्खियों के रोग और उनके उपचार के बारे में। तो राजेंद्र जी, अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे महेंद्र राठौर की आवाज में एक लोकगीत।
2: हो।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में सुनते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय है भारत में आलू की वर्तमान स्थिति और भविष्य के रुझान। डॉक्टर ब्रजेश सिंह से बातचीत करेंगी निशा शर्मा।
1: किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय आज रहेगा भारत में आलू की वर्तमान स्थिति और भविष्य के रुझान। जिस विषय पर हमें अधिक जानकारी देने आए हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, जो कि निदेशक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। तो डॉक्टर ब्रजेश, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो जैसे कि आज हमारा विषय है भारत में आलू की वर्तमान स्थिति और भविष्य के रुझान, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आलू जो है वो क्या हमारे देश की फसल है या फिर कहीं बाहर से आई है?
2: देखिए, आलू जो है हमारे देश की फसल नहीं है। ये दक्षिणी अमेरिका के जो है दो देश हैं, पेरू और बोलीविया, उनके पास एक झील है, टिटिकाका लेक बोलते हैं उसको। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व वहाँ पे आलू की उत्पत्ति हुई थी, और हमारे देश में ये लगभग 400 साल पहले आया। और जैसा हम जानते हैं कि उस समय अंग्रेज और पुर्तगाली लोग हमारे देश में फैले हुए थे, तो वो ऐसा माना जाता है कि वही जो है इसको हमारे देश में लाए। और क्योंकि वो गर्मियों के समय पे पहाड़ों में अपना निवास रखते थे, और जो उनकी वैरायटीज़ बाहर से लेके आए थे वो ऐसी वैरायटीज़ थी जो गर्मियों में पहाड़ी इलाकों में होती थी, तो वो उस तरह की किस्मों को लेके आए, और उस तरह से धीरे धीरे करके जो है आलू का विस्तार हमारे देश में हुआ।
1: जी, तो देखिए डॉक्टर साहब, इस दिशा में आपका जो संस्थान है वो क्या योगदान दे रहा है?
2: देखिए, संस्थान की जो हमारी स्थापना हुई वो 1949 में हुई, आज़ादी के बाद।
1: जी,
2: और तब आलू की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत कम क्षेत्रफल था, 2 मिलियन टन के आसपास पैदावार थी, और उत्पादकता भी जो थी वो भी कम थी। तो हमारा जब संस्थान बना तो इसका हेडक्वार्टर शिमला में लाया गया, और उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जैसी हमारे देश को किस्मों की आवश्यकता है उस तरह की किस्मों का विकास हो। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो पहले वैरायटीज़ आई थी बाहर से लाई गई थी वो गर्मियों में पहाड़ों में लगाने लायक तो थी, लेकिन क्योंकि हमारे देश में अधिकतर हिस्सा है देश का वो मैदानी इलाका है, तो वहाँ पे इन वैरायटीज़ की उपज बहुत अच्छी नहीं थी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हम ऐसी वैरायटी बनाएं जो मैदानी इलाकों में पैदा हो और अच्छी पैदावार भी दे सके। तो इस दिशा में इस संस्थान ने बहुत काम किया, और आज तक हम 78 वैरायटीज़ देश को दे चुके हैं। ये वैरायटीज़ कुफरी के नाम से जानी जाती हैं, कुफरी के साथ एक नाम लगा होता है, वो वैरायटी का असली नाम होता है। और कुफरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि जहाँ पे हमारा ये शिमला का हेडक्वार्टर स्थित है, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर हमारा फार्म है कुफरी में, और वहाँ पे हम जो है वहीं से आलू के जो किस्म है उसको बनाने की जो शुरुआत है वो वहीं से करते हैं। तो उस जगह को याद रखने के लिए हम हर वैरायटी के साथ कुफरी का नाम लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसी कारण से हमारे देश में आलू का विकास हो पाया।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, भारत में अगर आलू की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कैसी है?
2: जी हाँ, आज की डेट में मैं कहूँगा आलू की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। लगभग पिछले दो तीन साल से हम 60 मिलियन मेट्रिक टन आलू पैदा कर रहे हैं, जिसको अगर कन्वर्ट करें लाख के हिसाब से तो जो है 600 लाख टन आलू का उत्पादन हो रहा है देश में। जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स का है, और उत्पादकता हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, और अब हम 25 टन प्रति हेक्टेयर से ऊपर उत्पादकता में पहुंच चुके हैं। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत अच्छी स्थिति है। और पहले क्या होता था, एक दिक्कत आती थी कि हर दूसरे या तीसरे साल में आलू का ग्लट आ जाता था। ग्लट मतलब कि पैदा हो जाता था और उसको कंज्यूम करने वाले कम होते थे, लेकिन रिसेंट ट्रेंड देखा गया है कि आलू जितना पैदा हो रहा है उसकी खपत भी हो जा रही है, और खासकर इसमें मैं जो प्रसंस्करण है या प्रोसेसिंग है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको बताना चाहूँगा कि अब बहुत सारा हिस्सा आलू का ऐसा है जो प्रोसेस किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, और बनाए ही नहीं जा रहे हैं, हमारे देश में लोग खा भी रहे हैं उसको, और साथ के साथ उनका जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण से हम जो है बाहर से, मतलब जो फॉरेन रेवेन्यू बोलते हैं, उसको भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो ले दे के हम यही कहेंगे कि आलू की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है।
1: जी, साथ ही देखिए, भविष्य में आलू को लेकर क्या परिदृश्य है?
2: भविष्य

0: में अभी अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो आलू में लगातार विकास हो रहा है, चाहे वो हम एरिया की बात करें, चाहे प्रोडक्शन की बात करें या प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रति क्षेत्रफल कितना पैदा कर पाते हैं हम,
1: जी
0: तो इसमें लगातार विकास हो रहा है। और जिस तरह की जो वृद्धि दर है वो चली हुई है, उससे हमें लगता है कि जैसे हम विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, तब तक ये लगातार बढ़त हमें मिलेगी। उसके जो है खपत में भी हमें ये बढ़त मिलने की उम्मीद है। और तब हो सकता है 2047 तक जिस तरह का हमारा टारगेट है कि हम 90 मिलियन मेट्रिक टन आलू देश में पैदा कर पाएंगे।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अगर आलू के प्रयोग की बात की जाए तो किस किस तरह से इसका प्रयोग हो सकता है, और भी इसमें संभावनाएं किस तरह से हो सकती हैं?
0: जी देखिए, आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा आलू हमारे देश में अभी भी सब्जियों की तरह खाया जाता है। लगभग आप मान के चलें कि जो है 70% के आसपास हम आलू का उपयोग सब्जियों में करते हैं,
1: जी
0: क्योंकि हर घर में आलू किसी न किसी फॉर्म में उपयोग होता है सब्जियों में। उसके अलावा जो हम एक सीजन में पैदा करते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें रखना पड़ता है अगले साल बीज की तरह, तो उसमें भी लगभग 8% माना जाता है कि आलू बीज की तरह रखना पड़ता है हमें, तो वहाँ 8% वहाँ चला जाता है। प्रोसेसिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पहले हम 10% मान के चलते थे, बट अभी लगभग 12% तक संभावना है कि ये हमारी खपत जो है वो प्रोसेसिंग में हो रही है। और कुछ हिस्सा, क्योंकि ये जितने भी हमारे पेरिसेबल क्रॉप्स होती हैं उनमें कुछ हिस्सा खराब भी हो जाता है, जो
1: जी
0: पूरा प्रोसेस है कोल्ड स्टोर में रखना है, निकालना है, बाजार में जाएगा, वहाँ से आढ़ती के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर घरों में आएगा, तो ये इस पूरे प्रोसेस में कुछ हिस्सा आलू का खराब भी हो जाता है।
1: जी
0: तो स्थिति तो ऐसी है। और इसमें उपयोग अगर कहें तो उपयोग आलू एक ऐसी चीज़ है, ऐसा खाद्य पदार्थ है कि उससे बहुत तरह के जो है फर्दर जो है उसकी प्रोसेसिंग की जा सकती है।
1: जी
0: और चिप्स और फ्रेंच फ्राइज तो हम सभी जानते हैं,
1: जी
0: लेकिन आज की डेट में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज आ गई हैं जो आलू के भांति भांति के जो है उत्पाद बना रही हैं। और पहले भी जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में तो बिक ही रही हैं, उसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। तो
1: जी
0: जो एक्सपोर्ट हम जहाँ कर रहे हैं, जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाए और बेचे भी जा रहे हैं, भेजे भी जा रहे हैं।
1: जी
0: जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, पोटैटो फ्लेक्स। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी नहीं जानते हैं कि पोटैटो फ्लेक्स क्या होता है, जैसे चावल का चूरा होता है, ये आलू का भी आप चूरा मान के चले, और ये ऑलरेडी सेमी प्रोसेस होता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसको आप जैसा चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं, पाउडर बना के किसी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आलू का भुजिया, तो आलू का भुजिया ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश आलू से बनाएं, अगर आपके पास फ्लेक्स है तो फ्लेक्स को जो है बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके आलू का भुजिया बनाया जा सकता है। और यही नहीं, अब तो जो है संभावनाएं बहुत हैं। एक प्रोडक्ट है हैश ब्राउन बोलते हैं उसको,
1: जी
0: हमारे देश में उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी पसंद किया जाता है, उसको सैंडविच में यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो अब आप बस इस तरह से इमेजिन करिए कि हमारे देश में हैश ब्राउन बन रहा है और वो यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अगर हमारे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हमारे प्रदेश में आलू की क्या स्थिति है?
0: हिमाचल में आलू एक ट्रेडिशनल क्रॉप रही है, क्योंकि शुरू से ही सभी को विदित है कि समर कैपिटल माना जाता था शिमला को, और अंग्रेज यहाँ गर्मियों के टाइम में आके रहते थे, तो आलू को उन्होंने पॉपुलराइज किया। और बाद में क्योंकि वो हमारे सिस्टम में अडॉप्ट हो गया था, तो जब हमारी भी नई वैरायटीज आ गई और उसका जो है विकास हुआ फर्दर, तो आप मान के चले कि आलू हिमाचल में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में पैदा किया जाता है,
1: जी
0: और अच्छी स्थिति है। और सबसे बड़ा फायदेमंद जो बात है यहाँ के लिए कि जहाँ जितना भी आलू होता है वो ज़्यादातर ऑफ सीज़न है। ऑफ सीज़न मतलब कि जब मैदानी इलाकों में मेजर प्रोडक्शन कोल्ड स्टोर के अंदर चला जाता है, तब हमारी यहाँ पे ताज़ी फसल निकलती है, तो हमेशा वो हाथों हाथ खरीदी और बेची जाती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, देखिए हिमाचल प्रदेश की ही हम बात करते हैं, आपने बताया कि सभी क्षेत्रों में होता है, तो आप बताएं कि किन किन क्षेत्रों में होता है इसका उत्पादन, और कब होता है, समय क्या है?
0: जी देखिए, यहाँ मैं इसको कहूँगा कि हम तीन हिस्से में बांटते हैं। एक जो बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र है,
1: जी
0: जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए आप, किन्नौर ले लीजिए, लाहौल स्पीति ले लीजिए, यहाँ पे आलू की फसल गर्मियों में लगाई जाती है। जो बुआई का टाइम है वो अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई तक बुआई होती है, और सितंबर में जो है मिड सितंबर तक आके इसकी खुदाई की जाती है,
1: जी
0: तो इसको हम पहाड़ी आलू भी बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ, ये बीज आलू पैदा करने के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, और खाने वाला आलू भी जब यहाँ से पैदा होके जाता है तो

0: पहाड़ी आलू के नाम पे जो है बिकता है। दूसरा जो क्षेत्र मैं कहूँगा मेजर, वो है मिड हिल्स का। मिड हिल्स में हमारे कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे मंडी का डिस्ट्रिक्ट आता है, सोलन का डिस्ट्रिक्ट आता है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, कांगड़ा में किया जाता है। तो वहाँ पे जो बुवाई होती है वो जनवरी आखिरी सप्ताह से फरवरी के बीच में की जाती है, और उसकी खुदाई होती है लगभग मई, मिड मई के आसपास।
1: जी
0: तो ये भी जो है हाथों हाथ बिक जाता है। जो तीसरा मैं क्षेत्र कहूँगा वो वाले क्षेत्र हैं जो मैदानी इलाकों से मिलते जुलते हैं,
1: जी
0: जैसे ऊना का हमारा एरिया है, कुछ सिरमौर का एरिया है, जो लगभग मैदानी इलाकों जैसा ही है। और वहाँ पे जो फसल चक्र है वो मैदानों के हिसाब से ही रबी की क्रॉप है, जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी के आसपास उसकी खुदाई होती है। तो ये इस तरह के तीन हमारे क्षेत्र हैं, और तीनों की अपनी अपनी जो है आवश्यकताएं भी हैं, इम्पोर्टेंस भी है।
1: जी तो आलू की अच्छी फसल लेने के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु होना जरूरी है? थोड़ी सी आप इस बारे में भी बताएं।
0: हाँ बिल्कुल बताता हूँ। देखिए आलू सबसे पहली बात यह है कि ठंड को पसंद करने वाली क्रॉप है,
1: जी
0: तो इसीलिए अगर आप मैदानों में लगाना चाहते हैं तो वहाँ जो ठंड के दिन होते हैं, विंटर्स का सीज़न होता है,
1: जी
0: हम वहीं पे विंटर में ही लगा पाते हैं। पहाड़ों में हमें एडवांटेज ये है कि हमारा गर्मियों का समय रहता है, वो भी इतना गर्म नहीं होता है, लगभग जो है टेम्परेचर मीडियम टेम्परेचर होते हैं, तो वहाँ पे भी आलू पैदा किया जाता है। इनफैक्ट
1: जी
0: तो जो है आलू को पैदा करने के लिए जलवायु का, जैसे मैंने बताया कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रात का तापमान थोड़ा कम चाहिए ताकि आलू बन सके उसमें, पौधे में। और इसके अलावा अगर मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी आलू को पसंद है। जहाँ पे क्ले वाली मिट्टी होती है वहाँ पे इसका उतना अच्छा विकास नहीं होता है, और उसी हिसाब से आलू का क्षेत्रफल हमारे देश में फैला हुआ है। जलवायु और मिट्टी या बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बोलते हैं, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ पूरी होती है वहीं वहीं पे आलू की फसल पैदा की जाती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश की ही बात की जाए तो आलू की कौन कौन सी किस्में हैं जो यहाँ के लिए उपयुक्त मानी
0: जी
1: जाती हैं?
0: देखिए पहाड़ों के लिए एक स्पेसिफिक जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक बीमारी है जिसको पिछहता झुलसा या लेट ब्लाइट बोलते हैं। ये अमूमन हर साल आती है, जब हम यहाँ क्रॉप लगाते हैं तो उसके बाद बारिशें होने लगती हैं, और बारिश में इस बीमारी के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम जो भी विकास करें नई किस्मों का, उसमें इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता होना बहुत आवश्यक है। तो हम जितनी भी वैरायटीज पहाड़ों के लिए निकालते हैं उसमें लेट ब्लाइट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता होती है। तो अगर मैं नाम लूँ तो आज की डेट में कुफरी गिरधारी करके एक वैरायटी है, कुफरी हिमालनी करके वैरायटी है, कुफरी करण करके एक वैरायटी है जो धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, एक कुफरी सह्याद्री वैरायटी है, ये भी जो है लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। तो और इसी साल अभी हमने एक नई वैरायटी का विकास किया है जिसका नाम कुफरी अभेद्य रखा है,
1: जी
0: तो ये भी लेट ब्लाइट और जो है कुछ वायरसेस के लिए रेजिस्टेंस है इसमें। तो अगर इन वैरायटीज़ को हम लगाते हैं, किसान भाई लगाते हैं, तो इसके दो फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये है, पहला फायदा ये है कि इसमें बीमारी बहुत कम या तो आएगी नहीं, आएगी भी तो बहुत कम प्रकोप होगा। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा है किसानों को कि उनको बिना जरूरत के दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है, तो
1: जी
0: जो मेजर खर्चा उनका दवाइयों पे होता है वो जो है सारा खर्चा बच जाता है। और इन वैरायटीज़ की उपज भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी हैं ये वैरायटीज़, तो ये जो है सभी के पसंद के हिसाब से हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात कर लेते हैं भंडारण के बारे में।
0: जी
1: तो किस तरह से हमारे प्रदेश की ही बात की जाए?
0: देखिए जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तो कोल्ड स्टोर के अलावा आप आलू को भंडारित नहीं कर सकते,
1: जी
0: तो मैदानी इलाकों में क्योंकि टेम्परेचर्स गर्मियों में 40 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आलू को बचा के रखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस की व्यवस्था है, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तो कोल्ड स्टोर में रखना पड़ेगा। मिड हिल्स में ज़्यादातर लोग आलू हाथों हाथ बेच देते हैं, तो वहाँ रखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हाई हिल्स में जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि हाई हिल्स में ईश्वर की देन ऐसी है कि उसने नेचुरल कोल्ड स्टोर दे रखा है, किसी साफ हवादार कमरे में रख के जो है स्टोर किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमें कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती।
1: जी डॉक्टर साहब, एक बात रह गई, जैसे बीज का हम इस्तेमाल
0: जी
1: करते
0: जी
1: हैं तो उत्तम बीज क्या है, किस तरह से, या फिर अच्छा बीज हमारा किसान लेना चाहे तो कहाँ से प्राप्त कर सकता है?
0: देखिए इसके लिए जो मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने एक पूरा एक सिस्टम बना रखा है। इसमें होता क्या है कि जैसे हम आलू के वैरायटीज के डेवलपर हैं, तो उसका हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें ब्रीडर सीड आलू का बना के राज्य सरकारों को देना होता है। फिर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस ब्रीडर सीड को अपने फार्म्स पे लगा के उसमें से फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड बनाएंगे। जो सर्टिफाइड सीड होता है वो जो राज्य की सरकारें हैं, चाहे वो उद्यान विभाग हो या एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, उनकी वो फिर किसानों को एज सर्टिफाइड सीड मुहैया कराते हैं। तो किसानों को तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपने लेना है तो आप राज्य सरकार से जो है उद्यान विभाग या कहीं किसी किसी राज्य में एग्रीकल्चर आलू के ऊपर काम करता है तो उनसे संपर्क करके जो है अच्छी क्वालिटी का बीज वहां से प्राप्त करें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी भारत में आलू की वर्तमान स्थिति और भविष्य के रुझान इस विषय पर। तो डॉक्टर ब्रजेश, आपका हमारे स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था भारत में आलू की वर्तमान स्थिति और भविष्यों के रुझान। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर ब्रजेश सिंह और उनके साथ बातचीत कर रहे थे निशा शर्मा। तो राजेंद्र जी, अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे समूह स्वरों में एक और लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब दिनेश जी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कल के आकर्षण की। कल के आकर्षण में काम की बातों में हम बात करेंगे ढिंगरी मशरूम की खेती के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी। तो दिनेश जी घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों और भाइयों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। मीडिया वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:43:57 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को मिली नई पहचान। और राष्ट्रीय लोक अदालत में आज प्रदेश भर में 1,11,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्र

0: और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण के लिए भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और ये शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में बहुमूल्य योगदान, रचनात्मक भावना और प्रतिबद्धता के लिए नेताओं के प्रति आभार जताया। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को सरकारी प्रयासों तक सीमित न रखकर इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हिमालय संरक्षण के साथ ही राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूती मिलेगी। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि हिमालय का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं बल्कि मानव जीवन, क्षेत्रीय सुरक्षा और संपूर्ण समाज के भविष्य से जुड़ा विषय है।
2: हिमालयस को लेकर के हमारी चिंता है, हम खुद समझ सकते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल कितना जरूरी है। आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमें बार बार अलार्म कर रही है। तो अभी हमने नेपाल की त्रासदी भी देखी है, इससे पहले पिछले गत वर्षों में हिमाचल में भी बहुत कुछ हुआ, केदारनाथ की त्रासदी हमने देखी है। कहीं ना कहीं जब हिमालय से छेड़छाड़ होती है तो जल स्रोत जो हमारे जीवन रेखा है वो प्रलय का रूप धारण कर लेते हैं। ये जरूरी है कि इस प्रकार की जो संगठन है विशेष करके इसके बारे में सोचे, हमारी जो जीव विविधता है या दूसरी है जो हिमालय की, किस प्रकार से संरक्षण करना है, जल स्रोतों को कैसे बचाना है, ये सभी चिंता का विषय है।
0: प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं और आम नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती है। वे आज सोलन जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने युवाओं से अपने कौशल के माध्यम से देश के लिए कुछ नया करने, रोजगार के अवसर सृजित करने और विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने और उन्हें रोजगार के सीधे अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दीक्षांत समारोह में कुल 1047 विद्यार्थियों को उपाधि सहित 4 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग जारी है और नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में बताया कि सरकार की कार्रवाई केवल नशा तस्करों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और इससे अर्जित अवैध संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सरकार उन्हें हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने एआई सहित नई प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया है। जापान के टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उपमिशन प्रमुख आर मधुसूदन से एक भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को जापान की तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और नवाचार से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। धर्माणी ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण व रोजगार नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं?

0: हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
1: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
0: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
3: शेष समाचारों में, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि ऊना जिले के हरोली क्षेत्र को खेलों के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरोली में आज एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और इंडोर स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली महाविद्यालय के दूसरे भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को नई पहचान व नई दिशा मिली है। मंडी जिले के बालीचौकी में आज खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं और देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने का काम हुआ है। जयराम ठाकुर ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया है।
4: मैं आप सबसे इस बात के लिए खासतौर से कह रहा हूँ कि आगे बढ़ो। अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी अवेल करने में अगर कोई कमी रहेगी तो उसमें और किसी का दोष नहीं, वो हमारा ही दोष है। और आज की इस खेलकूद प्रतियोगिता में मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप खेल भावना के साथ खेलेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और मैं ये भी कहूंगा कि आप निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में भी अच्छा करें, खेलकूद के प्रतियोगिता में भी अच्छा करें। जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।
3: प्रदेश के सभी न्यायालयों में प्रीट लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। शिमला के जिला व सत्र न्यायाधीश रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि आज 145 बेंचों के समक्ष 1,46,825 मामले उठाए गए, जिनमें से 1,11,219 मामलों का निपटारा किया गया है। शिमला में कमला नेहरू अस्पताल को आईजीएमसी शिफ्ट करने के मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति 15 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने शिमला में कहा कि रोबोटिक सर्जरी की आड़ में सरकार इस ऐतिहासिक अस्पताल को नष्ट करने पर तुली हुई है। समिति के सचिव फालमा चौहान ने बताया कि कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए प्रदेश भर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसे जनता का भरपूर समर्थन मिला है।
5: हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा सिग्नेचर जो अभी तक हम लोगों ने करवाए हैं, और 15 सितंबर को हम ये जो सिग्नेचर है ये हम प्रदेश की सरकार को जो है सबमिट करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा जो मेमोरेंडम होगा उस दिन हम लोग सरकार को मिलेंगे। लोगों से, शिमला की जनता से ये अपील करते हैं कि 15 सितंबर को आप इस कमला नेहरू अस्पताल को बचाने के लिए भारी मात्रा में इस मुहिम में जुड़े।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हिमालय संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करेगी सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों को मिली नई पहचान और राष्ट्रीय लोक अदालत में आज प्रदेश भर में 1,11,000 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
6: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
7: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
6: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: इंद्र के नाम इस प्रकार से हैं, बाजार गढ़खल, थड़े का ठाकुर द्वारा, टिम्बर, कोटी, ओढ़ा, मध्याना, ये आंगनबाड़ी केंद्र के नाम हैं। मंगोटी मोड़, सेक्टर 2, नगर परिषद परमाणु, टकसाल, सियारड़ी चमारा, चामिया, घटसी कुकाना, नेरी, निचला बड्ढो, घटसी ब्रह्माणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर नियुक्त हेतु कुछ शर्तें इस प्रकार से हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका हेतु आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10.2 या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियम अनुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होना चाहिए। यद्यपि आंगनबाड़ी सहायिका यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन करती हैं, तो सहायिका का मानदेय वार्षिक आय में नहीं जोड़ा जाएगा। आवेदक उसी आंगनबाड़ी केंद्र के लाभान्वित पोषक क्षेत्र यानी फीडर एरिया के सामान्य निवासी होनी चाहिए और संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। साक्षात्कार के लिए अलग से आवेदकों को सूचित नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष से भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 264037 और एसटीडी कोड है 01792। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एवं प्रमुख घटनाओं पर विस्तारित विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में रिले किया जाएगा।

0: पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
0: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार

0: करें।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण और गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहले दिन सत्र समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंचने पर ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत की एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB के साथ साझेदारी को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष जू चियाची से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत की अवसंरचना और परिवहन संपर्क संबंधी प्राथमिकताओं को समर्थन देने, स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और AIIB की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। और भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. In the New Delhi Declaration adopted on the first day of the BRICS Summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
3: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। Representation, responsiveness और rule making तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
2: BRICS leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22 April last year in the strongest terms. They reaffirmed commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8:11 हो गए हैं, समय है हिंदुस्तानी संगीत की।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:11 और 14 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

मिले जुले गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए रुपेंद्र हांडा को।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लकी अली को लीजिए सुनिए सिफर एल्बम में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। पहले समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 रिले की जाएंगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालेंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
2: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
2: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
2: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
2: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together. to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस

0: से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. The BRICS nations adopted the New Delhi Declaration on the first day of the summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added,

0: eliminated Karen Khachanov of Russia in the first semi-final, while 8 seed Shelton beat 11 seed American Frances Tiafoe in the other. In the women's semi-finals, top seed Sabalenka defeated 3rd seed Jessica Pegula, while 2nd seed Rybakina beat 4th seed Coco Gauff. In women's doubles, Katerina Siniakova and Taylor Townsend won the title, defeating Americans Robin Montgomery and Ashlyn Kruger in the final. In cricket, India will begin their three-match T20I series against Afghanistan at Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. All three matches are scheduled at the same venue. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall over Gujarat region tomorrow. The Weather Department said Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch are expected to face heavy to very heavy rainfall. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action, emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of red notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Arina Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी शिमला से हिमदर्शन कार्यक्रम कुछ ही पहलों में रिले किया जाएगा।
2: श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश सरकार ने CBSE स्कूलों के लिए ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म और भवन रंग योजना को दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनाव में भाजपा की जीत को बताया कांग्रेस के लिए निराशाजनक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल से हिमाचल में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिमला में एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इसमें दूध के मूल्य में की गई वृद्धि एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर स्तर पर नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। प्रदेश सरकार ने CBSE स्कूलों के लिए ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म और भवन रंग योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंजूरी दी गई। सरकार द्वारा तय की गई योजना के अनुसार CBSE स्कूलों के विद्यार्थियों की विशिष्ट यूनिफॉर्म हरे रंग के थीम पर आधारित होगी। इन स्कूलों की महिला शिक्षक हल्के बैंगनी रंग की पोशाक पहनेगी, जबकि पुरुष शिक्षक हल्के नीले रंग की पैंट और शर्ट पहनेंगे। शिक्षकों का ड्रेस कोड साफ सुथरा, औपचारिक, शालीन और पेशेवर होगा तथा इसमें न्यूनतम सहायक वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान शिक्षकों को अपना पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। CBSE स्कूलों के भवनों को ऑलिव ग्रीन और सैंडबेज रंगों से रंगा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को उनके घरों के नज़दीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को अध्यक्ष और भरत सिंह कलांटा को उपाध्यक्ष चुना गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुरेंद्र रेखटा को 10 वोट हासिल हुए। अध्यक्ष पद के लिए 2 वोट अमान्य घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के भरत सिंह कलांटा को 14 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की मीनाक्षी को 10 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर 1 वोट अमान्य घोषित किया गया। शिमला जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने इसे प्रदेश सरकार के खिलाफ जनादेश करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगभग 25 वर्षों बाद शिमला जिला परिषद पर कब्जा किया है।
3: जिला परिषद चेयरमैन जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है शिमला में, जिस शिमला में बीजेपी का कई सालों बाद ये जो है किला फतेह हुआ और एक कील गाड़ी और सुक्कू शासन के ऊपर ये आज पता लग गया है। सुक्कू जी का शासन जो है जिला शिमला में भी रेड हो गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जीत है और आने वाले इलेक्शन का एक शुरुआत है।
2: नवनियुक्त जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने चुनाव के बाद कहा कि वे जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
4: ये चुनाव के नतीजे पहले भी यही रहने थे और इसको कांग्रेस टालती रही। कांग्रेस के खिलाफ इतना रोष पहले से था, अब बहुत ज्यादा रोष था। और ये जिला परिषद का जो मुझे चेयरमैन बनाया, मैं उसके लिए अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और सभी जिला परिषद मेंबर का और सारे नेतागण का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
5: मैं जनता का आदमी हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो लोगों ने मुझे उसी एवज में समर्थन दिया, प्यार दिया, जिसके लिए मैं उनका ताऊ मर नहीं रहूँ। समस्याएं जब होती है तो फिर उसको कई तरह के कम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं।
2: इधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला परिषद चुनाव में भाजपा की जीत को कांग्रेस के लिए निराशाजनक करार दिया है। रोहित ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का दुर्ग्रह शिमला जिला में पार्टी का पंचायत चुनाव में प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में इन नतीजों की गंभीरता से समीक्षा और आत्म मंथन करने की जरूरत है।
6: जनता जनार्दन का जनमत है, स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट हमें समीक्षा करनी होगी। चैतिराज एक तरह से खा रहे आपका बेस है, चाहे संगठन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को धरातल तक, अपनी स्कीम्स को, योजनाओं को धरातल तक पहुँचाना, उसमें अहम रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रहता है। तो निश्चित रूप में जो नुकसान हुआ है या जो परिणाम आए हैं, इसमें समीक्षा करना आवश्यक है।
2: रोहित ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी नेताओं से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसमें सरकार के 4 साल का कार्यकाल भी शामिल है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंत्रिमंडल की बैठक सरकार में किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण स्थगित की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि प्रदेश के लोग आए दिन एक ना एक सुख शुल्क से प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार के ज्यादातर आदेश और अधिसूचनाएं किसी ना किसी सेवा को समाप्त करने, संस्थान बंद करने और शुल्क लगाने के लिए जारी हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अब सरकार ने परिवार रजिस्टर की नकल के लिए भी शुल्क लगा दिया है, जबकि स्टाम्प से लेकर अन्य आवश्यक जनसुविधाओं की कीमतों को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रावधान किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और वर्तमान राजनीतिक हालात से विचलित हैं और उन्हें इस स्थिति से प्रदेश की जनता को अवगत करवाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को उत्कृष्ट संसदीय योगदान के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान दिल्ली में आयोजित सांसद रत्न पुरस्कार समारोह में मूल रिपोर्टों की प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन

0: श्रेणी में दिया गया। अनुराग ठाकुर वर्ष 2024 से कोयला खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए ज्यूरी सदस्यों का आभार जताया। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का हिमाचल में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेश में बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले धरने प्रदर्शन किए। शिमला में आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रदेश संयोजक नरेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि अब भी सरकार और बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से देश भर में बैंकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी।
1: अराउंड 96-97% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स जो बैंकिंग इंडस्ट्री की है आज पूरी स्ट्राइक पे है। कि जो ये स्ट्राइक है इसके मुख्य दो मांगे हमारी है। पहली जो मांग है हमारी वो 5-day बैंकिंग को लेकर के, और जो दूसरा मुद्दा है वो PLI को लेकर है। ये इमीडिएट कारण बना और इसी को बात को लेकर के जो ये एक सांकेतिक घाटे का ताल है, 3 दिन की हम जैसे मैंने कहा 28, 29, 30 को करेंगे और उसके बाद हम 26 अक्टूबर से जो है टोटल इनडेफिनेट स्ट्राइक पे।
0: मंडी मनाली 4-lane सड़क पर अब यात्रा और सुगम हो गई है। इस सड़क पर बनी दो सुरंगों दियोड़ हणोगी को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इन सुरंगों के शुरू हो जाने से मंडी से कुल्लू का सफर अब महज 1 घंटे में पूरा हो जाएगा।
2: करीब 4,466 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस 4-lane परियोजना में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी ये दोनों सुरंगें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनसे शुरू होने से भूस्खलन और जाम के लिए बदनाम 5 से 6 किलोमीटर लंबे घुमावदार हिस्से को बाईपास किया गया है। मंडी से कुल्लू की दूरी 78 किलोमीटर से घटकर अब 60 किलोमीटर रह गई है और सफर का समय भी लगभग 2 घंटे से घटकर 1-1.5 घंटे का रह जाएगा। हणोगी सुरंग का वर्ष 2025 की मानसून आपदा में भारी नुकसान पहुंचा था। इसे रिकॉर्ड 60 दिनों में करीब 57 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा तैयार किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इन सुरंगों के खुलने पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई दी है। इन सुरंगों के खुलने से कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों और सेब उत्पादों को बड़ी राहत मिलेगी।
0: नाहन विधानसभा क्षेत्र की मात्र पंचायत के ग्रामीणों ने सड़क की समस्या को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के चलते उन्हें आवाजाही में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इससे ग्रामीणों की आर्थिकी भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मात्र पंचायत के लिए बन रही सड़क की बेतरतीब कटिंग के कारण बार बार भूस्खलन हो रहा है, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है।
3: आज भी हमारे इस काम की सुनवाई नहीं होती है तो हम प्रशासन को एक बात बता देते हैं कि जितना भी ये हमें समय देंगे 10 दिन 20 दिन कि हम इतने दिन में आपका काम करेंगे, अगर उतने दिन के अंदर हमारा काम नहीं होता है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए चाहे हमें फिर चक्का जाम करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हमें किसी का भी विरोध करना पड़े। और एक सबसे जरूरी बात, आने वाले समय में अगर हमारे इस समस्या का समाधान नहीं होता है, चाहे हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे हमारे विधानसभा के इलेक्शन हो, हम दोनों का ही बहिष्कार करेंगे। हमारे गाँव से, हमारी पंचायत से दोनों इलेक्शन की पेटियाँ खाली जाएंगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में बताया कि राज्य में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 13 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश को विकास का मॉडल दिया है।
4: 17, 18, 19 और 20 4 दिन में हिमाचल प्रदेश में सब जगह रक्तदान शिविर लगेंगे और जितने ब्लड बैंक्स की कैपेसिटी 100% कैपेसिटी फुल करेंगे। स्कूली बच्चों को लेकर विकसित भारत की कल्पना, उसके ऊपर पेंटिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित करना, 25 साल सेवा समर्पण के तो 25 प्रकार के सेवा के अभियान। भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में, हर पोलिंग बूथ पर अलग अलग प्रकार से सेवा के अभियान।
0: प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है और रोजाना 1.5 लाख से अधिक पेटियां मंडियों में भेजी जा रही हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 60 लाख से अधिक पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी हैं।
5: मॉनसून की बारिश के बीच हिमाचल में सेब सीजन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। हिमाचल से बाहरी राज्यों के लिए रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पेटियां भेजी जा रही है। एपीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 60 लाख पेटियां बाहरी राज्यों को भेजी जा चुकी है। वहीं अब तक करीब 1 करोड़ पेटियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की मंडियों में पहुंच चुकी हैं। मंडियों के साथ साथ सीधे कारोबार के जरिए भी सेब लगातार बाजार का रुख कर रहा है। शिमला और किन्नौर क्षेत्र सेब भेजने में सबसे आगे है। इस बार फसल कम है लेकिन बागवानों को दाम अच्छे मिल रहे हैं। शिमला और किन्नौर के 20 किलो के बॉक्स का दाम 400 रुपए से 4000 रुपए प्रति पेटी तक बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में सीजन की शुरुआत में 2.25 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान था लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए आंकड़ा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। पिछले साल करीब 3 करोड़ से ज्यादा पेटियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था। इस बार उत्पादन 2.25 करोड़ पेटियों के आसपास सिमटने के आसार हैं।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार से जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर शिक्षकों की कमी पाई गई है जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये खामियां सरकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं।
6: शिक्षा के आंकड़े आप देख लें, शिक्षा का स्तर क्या है। बड़ी हैरानी होती है जब 150 से ज्यादा स्कूल हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें एक भी अध्यापक नहीं, 3,500 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक अध्यापक है। और जो दावा करते थे कि हिमाचल प्रदेश तो पिछले 4 सालों में शिक्षा में बड़ी लंबी छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर प्रदेश भर में आ गए हैं, मैं देख रहा था आंकड़े, जो टॉप के 10 राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का कहीं नाम भी नहीं है।
0: इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृति भारती, रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती भी इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्रायः अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था, अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूँ और भीतर भी हूँ। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियाँ, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं? अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनों का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया। उसी निष्ठा से, जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गई। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं। इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल बढ़ रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
0: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है वांगला। और इसी वांगला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी सालजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसिशाल्जो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है? इसकी प्रस्तुति में कौन सी लय और भाव छुपे हैं?
4: मेरा नाम अनालिशा है, मैं मेघालय से हूँ, गारो ट्राइब से। तो ये हमारा वांगला डांस जो है वो एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू करा था। जो ट्राइब है मेघालय की उसका एक गॉड है जो कि हम बोलते हैं मिसिशाल्जो, जो कि सन के गॉड हैं। तो हम उनको हमारी अच्छी हार्वेस्ट को प्रेज करने के लिए या फिर वर्शिप करने के लिए हम ये वांगला डांस परफॉर्म करते हैं। 100 ड्रम्स वांगला ये एक फेस्टिवल है, इस पे हम वांगला परफॉर्म करते हैं। हमारा जो ड्रम्स होता है हम खुद ड्रम्स बजा के हम डांस करते हैं। जो लड़के लोग होते हैं वो ड्रम्स, हमारे ड्रम जो होते हैं उसको दामा बोलते हैं, लंबे ड्रम होते हैं, वो लड़के लोग डांस के टाइम पे उसको कैरी करते हैं और वो बजाते हैं उस टाइम पे, तो वही हमारा इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक हो जाता है।
2: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
3: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
2: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
3: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
4: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नाथापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सेंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियां पहनते हैं उसको हम जक्सान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
3: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
5: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गामचा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम डोमे भी पहनते हैं। डोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
2: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
3: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
2: और मैं नेत्रा।
0: आशीर्वाद मिसिशाल्जोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

0: पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत, इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तांबड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाऊ रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है। हम गुलाल नहीं यूज करते, और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइस पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी

0: जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया। मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
1: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
2: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
1: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
2: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
2: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
3: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना, पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियां सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयं सेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयं सेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
4: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड वेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज़ वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
2: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची, दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
0: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित A.R. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पिहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र